कुमल रुख से राय रात गिरगत मुचू ओ जे आवे अस करी जल रस कित फल के फिर बप बप कर।

ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾ।

गौ ब्राह्मण को कर लावे गोबर तर न जाई धोती टिका तै जप माली धन में चा खाई अंतर पूजा पर

नील वस्त्र पैर हुए प्रवाह, मलेश तान ले पूजे पुरा, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे न जाना, देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़िया, मत पिटै वे मत पिटै एहो अन्या साडा फिटै, तन फिटै फेड करी मन झूठे कली परे, को नानक सच आई है, सच होवे ता सच पाए पौड़ चित अंदर।

0: ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨਵੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अंबा समुद्रम, परमकोडी और नमक्कल शामिल है। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले के कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अद्दीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
2: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली।
3: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की

0: सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को रूस के तेल शोधक कारखानों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को निशाना बनाने को लेकर भी चेतावनी दी। श्री ट्रंप की टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत है।

तेज प्रताप वाला अते क्रियाशील इंसान इकला ही समाज विच सैकड़े बुराइयां नूं खत्म कर सकता है। लोड़ तां सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति।

आए हुए सभी व्यक्तियों की एक ही कामना है कि गुरु, समाज तथा भाइयों सहित श्री राम का राज तिलक अवधपुरी में हो और उनके राज्यकाल में ही सबकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो। अयोध्या वासियों की इस प्रेमाभिव्यक्ति पर ऋषि मुनि अपने योग वैराग्य को हे मानते हैं। श्री राम के प्रति प्रजाजन की इस निष्ठा और समर्पण की भावना से किसे ईर्ष्या नहीं होगी। मिथिला नरेश के आगमन का समाचार सुनकर श्री राम सभा समेत आदर पूर्वक उठ खड़े हुए और लक्ष्मण, गुरु तथा पुरवासियों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने चले। राजा जनक ने वशिष्ठ तथा अन्य मुनियों के चरणों की वंदना की। श्री राम ने जनकपुर वासियों तथा राजपुरोहित शतानंद को प्रणाम किया और आदर पूर्वक उन्हें आश्रम ले चले।

0: योजनाम् अनुरूपं प्रशासनम् अधुना युवकेभ्यः नीतिः इति अवधारणायाः परं गत्वा युवजनैः निर्मिता नीतिः तथा युवजनैः सह निर्मिता नीतिः इत्येतयोः दिशयोः अग्रे सरति। उत्तर रेल मार्गेण घोषितं यत् अद्य सर्वाणि रेलयानानि स्वसामान्य समय सारण्य अनुसारं प्रचलिष्यन्ति। रेल विभागेन ह्यः प्रातः चतुर्वादनात् अपराह्णे द्विवादन पर्यन्तं नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेल स्थानकयोः आगन्तव्यानि मेल एक्सप्रेस रेलयानानि निरस्तानि कर्तुं निर्णयः गृहीतः आसीत्। विश्वस्य दीर्घतमेषु नृत्योत्सवेषु अन्यतमः नवरात्र महोत्सवः अद्य गुजरात राज्ये महता उत्साहेन भक्तिभावेन च प्रारभते। नवदिनात्मकः अयं महोत्सवः दुर्गा देव्याः नवानां स्वरूपाणाम् आराधनायै समर्पितः अस्ति। शारदीय नवरात्रस्य प्रथमदिने अनेके श्रद्धालवः गुजरातस्य प्रसिद्धेषु देवी मन्दिरेषु दर्शनार्थं गच्छन्ति। महोत्सवकाले सुरक्षां सुनिश्चेतुं गुजरात आरक्षिदलेन राज्यस्य 22,000+ गरबास्थलेषु व्यापकाः सुरक्षाव्यवस्थाः कृताः सन्ति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नवरात्र महोत्सवस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 73.6 मीटर जनी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्री। न्यूज़ हेडलाइंस पेशने मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई विखे 13,000 करोड़ रुपए दे प्रोजेक्टां दा उद्घाटन करनगे। बीजेपी ने कहा कि हालिया जिमनी चोणों विच पार्टी दी जितने साबित कीता है कि लोकतंत्र ने देश विच अराजकता फैलाउण दीआं कोशिशां नूं नाकाम कर दिता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आधुनिक जंग ते विश्व सुरक्षा दी व्यवस्था विच वड्डे बदलाव विचकार भारत अपने गुआंढ ते इस तों बाहर दे घटनाक्रम ते उन्हां दे रणनीतिक प्रभावां दे नेड़ों नज़र रख रहा है। राज्यसभा मैंबर संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने नौजवानों विच जल खेडां नूं उत्साहित करन दा सद्दा दित्ता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम तहत चप्पड़चिड़ी तों बाइक रैली नूं रवाना कीता। पंजाब सरकार दिवाली तों पहलां ग्रुप डी मुलाजमां नूं 10,000 रुपए दा ब्याज मुक्त त्योहारी एडवांस देवेगी। मोहाली स्थित महाराजा रणजीत सिंह प्रापरेटरी इंस्टीट्यूट के 57 कैडटों वालों NDA 2 लिखती प्रीख्या पास। संस्था वालों 87.7% हुण तक की सब तो वड्डी सफलता दर्ज की गई है। पठानकोट खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग ने भोआ विखे जिला पद्धरी किसान सिखलाई कैंप लगाया। भारत ते वैस्ट इंडीज विचकार मर्दा दा तीजा 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच अज इंदौर के होलकर स्टेडियम विच खेडिया जाएगा। ए सन न्यूज हेडलाइंस यानी मुख खबरां। मीडियम वेव 373.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्रीय।

स्वागत आप सब चाहण वालियां दा, चाह के मुस्कुराउण वालियां दा। सलाम। सूरज चढ़न तो पहला पंछियों की चहचहाट ते उन्हां दा जज्बा जो नवी उड़ान भरन लई तैयार हुंदे। दिन चढ़दे सार ही वह अपने टिकाणियां ते उड़ के नवे मुकामां वल कूच करते ने। प्यार मुहब्बत ते सादगी सब गुण अपने विच भर के पंछी भी जोड़े है वो सानू दसते नहीं कि फिक्र ना करया करो, जिंदगी जी के देखा करो, साढ़े इस दुनिया के आने का मकसद पूरा हो जाऊगा। असं बहुत बार सोच सोच के फिक्र कर लग जाने, आ नहीं मिले, आ नहीं मिले, आ भी हो जाए मेरा, वह भी हो जाए मेरा, पता भी है इतने कुछ नहीं है तेरा, फिर भी कल भी इदा आप जिंदगी गलते फिरते हैं। आ नहीं मिले, आ नहीं मिले, कित आ मिल जाता तो शायद आ होर भी वधिया हो जाता। पता नहीं की सोचते रहने, आप अपनी जिंदगी बड़ी उदास जी बना के बैठे रहने। इसलिए जिंदगी कदे भी जी नहीं भी आई दी, मस्ती च रही गल दिल तो नहीं लाई दी। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गगनदीप सोंधी हाँ, तुहाडा अपना दोस्त। दोस्तों सवेर दे वेले दे विच बहुत कुछ छुपया होया, बड़िया सोहनिया सोहनिया चीजा, बहुत वधिया वधिया सुनेहे, सोहनिया सियाणिया गल्लां कंधां ते लिखियां भी मिल जांदियां। बड़ा फायदेमंद है जी तड़के दा उठना, हिम्मतां ते आलसां नूं पासे कर सुटना, सुबह जिही ताजगी नूं मुल मिलदी। ते समझो ना मित्रों, इह कुछ नहीं हुंदी, उह मॉर्निंग वॉक नाल गल बणदी है, मैसेजां दे नाल मॉर्निंग गुड नहीं हुंदी। सो किते ना किते सानूं अपनी सोच नूं थोड़ा जिहा हाँ वाचक जिहा करके तो सोचना पैना कि असीं की कर रहे हां। तुहाडे आस पास जिहड़े लोग ने तुसीं उहनां नूं कदे बदल नहीं सकते, पर जो लोग तुहाडे आस पास ने तुसीं उहनां नूं जरूर बदल सकते हो। हुण गल तां थोड़ी जी गुंझलदार है, पर समझने वास्ते मैं दुबारा फिर इहनूं बोल दिंदा वी तुहाडे आले दुआले जां फिर आस पास जिहड़े लोग आ तुसीं उहनां नूं कदे नहीं बदल सकते, पर जिहड़े लोग तुहाडे आले दुआले ने आस पास ने तुसीं उहनां नूं जरूर बदल सकते हो। सो जिंदगी जीण दा सोहना जिहा प्यारा जिहा तरीका सिर्फ इहो ही आ, सवेरे उठ के परमात्मा दा नाम लईए, सवेरे उठ के देखिए कि कुदरत किन्नी मेहरबान है, क्योंकि कुदरत बड़ी वड्डी नेमत सानू दे के नवाजदी है। सवेरे सवेरे मेरी सोच नतार के दसी, चुप दा जिंदरा मार के दसी, अज फिर सोचा दे विच तैनू जित लिया है ना, मैं ये हार के दसी। ये सानू कई बारी जिंदगी हराउंदी है, कई बारी जिंदगी साडे कोलों बहुत कुछ खो लैंदी है। हो सकदा रब कुछ चीज़ां नू साडे कोलों खोंदा, उहदे विच इही है कि नुकसानदेह साडे वास्ते हो सकदी, इस करके उहने खो लईआं। हो सकता उन्होंने उम्र म्याद पूरी हो चुकी होगी, इस करके सानू खो लेंगे। सो किते ना किते सानू सोचना पैना कि जिंदगी जिंदगी दी तरह ही रहे तो वधिया, जे जिंदगी नू असी अपने तरीके नाल ही जी लईए तो फिर वधिया। जे इस जगह उत्ते तुसी बैठे हैं उत्थे जे तुसी खुशी महसूस कर रहे हैं, अपने काम दे विच खुशी महसूस कर रहे हैं, काम छोटा वड्डा नहीं, बंदे की सोच है छोटी वड्डी, बाहरों की खटणगे अंदरों नीयत जिन्हां दी खोटी। सो किते ना किते सानू सोचना पैना, विचारना पैना, ते आपां फिर विचारना भी बहुत कुछ है। थोड़ा जिहा सोचिए, थोड़ा जिहा विचारीए, सवेर दे वेले दे विच कोई ना कोई एहो जिही गल सिखीए जिहदे नाल साडी जिंदगी बड़ी सार्थक बड़ी वधिया जी हो जाए। कर कोई गल कमाल गया, कोई नहीं मैं नाल गया, ते कल्ला सांभना औखा है, और टब्बर नूं जो पाल गया, ठंडा चुल्हा मातड़दा पत्थरां तीकर गाल गया, रूपई रोटी चोरी दी जद इक फड़िया बाल गया। सो साडी जिम्मेवारी, साडी जिंदगी, साडी

लाइव मॉर्निंग शो सोनी शरीर सोनी कुदरत कुदरत वालों दित्तियां गईयां दातां दे विचों एक दात धी दी दात अज अंतरराष्ट्रीय बालड़ी दिवस खास तौर दे उत्ते मनाया जांदा। जे आपां गल करिए अज दे दिन दी ते अज दा दिन सानूं सिखाउंदा है कि असी अपनियां जिम्मेवारियां दे नाल किस तरीके दे नाल वो सारिया गल्लां वो सारिया जिम्मेवारियां निभाउणियां ने जिहड़ियां सानूं कुदरत ने परमात्मा ने दित्तियां ने ते समाजिक तौर

0: ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.cybercrime.gov.in ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। 8 ਵਜੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा, रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं।
3: प्रधानमंत्री सड़क विकास, बंदरगाहों और विज्ञान में नवाचार से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखना और उद्घाटन करना शामिल है। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनाली रिफाइनरी में यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह पर एक अतिरिक्त कोयला घाट परियोजना भी उद्घाटन करेंगे और कंटेनर टर्मिनल के लिए कैपिटल डेजिंग कार्यों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और चेन्नई के जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
4: इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, ऋण की उपलब्धता और फसल कटाई के बाद की आधारभूत संरचना में सुधार करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं, वहीं 36 केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है।

0: पहले वर्ष के दौरान योजना के लिए चुने गए सभी 100 जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और उनका क्रियान्वयन जारी है। इन जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85% से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89% हो गया। नितिका गुप्ता के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको गुजरात की बंदरगाह क्रांति के बारे में बता रहे हैं।
2: गुजरात के पास देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, लेकिन दशकों तक इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तटरेखा को केवल भूगोल न मानकर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखने के दूरदर्शी विजन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपीपी मॉडल के साथ निजी निवेश को आमंत्रित किया। बंदरगाहों को बिजली, सड़क, रेल और औद्योगिक क्षेत्रों से इस तरह जोड़ा गया कि फैक्ट्री सीधे बंदरगाह और बंदरगाह सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ सके। इसी मॉडल पर मुंद्रा, हजीरा और पीपावाव जैसे देश के प्रमुख निजी बंदरगाह विकसित हुए। गुजरात का यही सफल मॉडल आगे चलकर सागरमाला के रूप में राष्ट्रीय नीति बना, जिसके तहत देश के बंदरगाहों की क्षमता 2014-15 के 1561 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2817 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई और प्रमुख बंदरगाहों पर टर्न अराउंड टाइम भी घटकर आधा हो गया। भारत की समुद्री उपलब्धियां और हरित पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है।
2: इसी विजन के साथ गुजरात के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य राहुल मोदी ने कहा,
4: जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी जो सोच थी कि समुद्र और बंदरगाह केवल कार्गो हैंडलिंग के साधन नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन बनने की पूरी ताकत रखते हैं, इसी सोच के साथ पोर्ट्स को उन्होंने रोड, रेलवे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एसईजेड, लॉजिस्टिक, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा।
2: समुद्री तटों को आर्थिक प्रगति के इंजन में बदलकर भारत का यह बंदरगाह आधारित विकास देश को वैश्विक समुद्री मंच पर अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का

0: ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में नवरात्रि के आगमन के साथ ही राज्य के सभी शहर भव्य रास गरबा समारोह के लिए तैयार हैं।
1: गुजरात में नवरात्रि का ये पर्व पारंपरिक गरबों प्रज्वलित कर, उपवास रखकर, घट स्थापन जैसे विशेष अनुष्ठानों और पारंपरिक रास गरबा नृत्य के साथ उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बनासकांठा प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर और कच्छ के माताना मढ़ मंदिर सहित राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्य भर के 22,000

0: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बनासकांठा प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर और कच्छ के माताना मढ़ मंदिर सहित राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्य भर के 22,000 से अधिक गरबा स्थलों पर कड़े प्रबंध किए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: तेलंगाना का विशेष पुष्प उत्सव बथुकम्मा कल एंगलीपुला बथुकम्मा के साथ शुरू हुआ। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव में महिलाएं तंगेड़ू, गुनुनु, गेंदा और गुलदाउदी जैसे रंग बिरंगे फूलों से बथुकम्मा तैयार करती हैं। काला सागर में जहाज से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से अब स्वदेश लौट रहे हैं। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि साहिल संधु, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह को उनकी वापसी के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। काला सागर में सोमवार को जहाज एमवी रॉयद मम्मा दोव पर हुए हमले में घायल हुए क्रू सदस्यों में ये 3 भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता तथा साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमरीका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ 3रा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। यह मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
3: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
2: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
3: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
2: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुकेश। आज सभी समाचार पत्रों ने नवरात्रि शुरू होने की शुभकामनाएं दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, देवी हमारे द्वार, शक्ति का वास हमारे आसपास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मंदिर सजे, शक्ति की भक्ति में आज से लीन होंगे श्रद्धालु। रामलीला मंचन का गणेश वंदना के साथ होगा शुभारंभ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शब्द जनसत्ता ने प्रकाशित किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 56 विशेष बसें चला रही सरकार, दिल्ली की बसों में 2000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात। अमेरिका और रूस में डीजल डील, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से 7 अप्रैल तक डीजल सप्लाई बैन हटाया। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों में है, कैप्टन स्मिथ पर हमले की जांच, NIA को पायलट पर केस। दैनिक जागरण की खबर है, पत्र लिखता है, फ्लाई दुबई विमान अपहरण और आतंकी साजिश की होगी जांच। पहाड़ों के छोटे से गांव में बसता है मिनी सराय, मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर धर्मकोट। राजस्थान पत्रिका ने यह खबर पर्यटन को बढ़ावा शीर्षक से प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का

0: wounded over 300. An immense cricket India to take on West Indies in third T20 International in Indore this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दिया खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई विखे 13,000 करोड़ रुपए तो वादे प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। उत्तरी रेलवे ने कहा अज सारिया रेलगड्डिया आपो अपने निर्धारित समा सारणी मुताबक चलनगिया। देवी दुर्गा की पूजा का 9 दिनों का त्यौहार नवरात्रि अज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह नाल शुरू होया। साउदी अरब के रियाद कौमांतरी हवाई अड्डे से हुए हमले 12 लोग मारे गए तो 300 तो वध जख्मी। भारत के वैस्ट इंडीज दरमियान मर्दा का तीजा 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच अज इंदौर च खेडिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज चेन्नई का दौरा करेंगे। इस दौरे दौरान वह 13,000 करोड़ रुपए तो वादे प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत नाल तैयार किए गए चेन्नई मैट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूजे गेट की मैट्रो रेल सेवा नूं रवाना करेंगे। वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय नाल मैट्रो रेलगड्डी राही भी यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए तो वादी लागत वाले रेलवे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की शुरुआत करेंगे। इन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना तहत मुड़ विकसित किए गए 5 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन शामिल है। इन्होंने पलनी वेलोर छावनी अंबा समुद्रम परमकुडी नमकल शामिल ने। श्री मोदी करीब 3,700 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रमुख राष्ट्रीय शाहरा प्रोजेक्टों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु च बंदरगाहों नाल संबंधित कई प्रोजेक्टों का नींव पत्थर भी रखेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना नूं आज 1 साल पूरा हो गया। पिछले साल आज ही दिन देश भर के 100 आसमंद खेतीबाड़ी जिले च खेतीबाड़ी खेतर नूं मजबूत करने के उद्देश नाल शुरू की गई यह योजना 11 मंत्रालयों के विभागों दी 36 केंद्रीय योजनाओं को आपस में जोड़ती है। इस तो इलावा हरेक जिले दी खास खेतीबाड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए सूबा सरकार दी योजनाओं और निजी खेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है। उत्तरी रेलवे ने ऐलान किया कि अज सारिया रेलगड्डिया आपो अपने निर्धारित समा सारणी मुताबक चलनगिया। रेलवे ने कल सवेरे 4 बजे तो दोपहर 2 बजे के दरमियान नवी दिल्ली ते हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पहुंचने वाली मेल ते एक्सप्रेस रेलगड्डिया रद्द करने का फैसला किया। उधर दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन DMRC ने ऐलान किया कि सुरक्षा कारण करके बंद किए गए सारे 45 मैट्रो स्टेशन में दाखिल होने ते बाहर निकलने वाले दरवाजे हुण दोबारा खोल दिए गए ने। DMRC ने भी कहा कि सारे संबंधित मैट्रो स्टेशन उत्ते इंटरचेंज सहूलत बहाल कर दी गई ने। जिक्रयोग है कि दिल्ली मैट्रो ने सुरक्षा कारण करके कल रात 10 बजे तक 45 मैट्रो स्टेशन बंद कर दिए सन। राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने आज लई एक ट्रैफिक सलाह जारी की है। ट्रैफिक पुलिस मुताबक मौजूदा स्थिति के आधार पर सवेरे 6 बजे तो वख-वख रूटां ते आवाजाई नूं मोड़ दिता गया। कई थावां ते आवाजाई प्रभावित हो सकती है जिस विच शंकर रोड वंदे मातरम ईटी पॉइंट तो नवी दिल्ली जाने वाला गोल चक्कर चंडेलवालान पंचकुइया रोड गोल डाकखाना पटेल चौक मंडी हाउस पैरों रोड रिंग टी पॉइंट ते लोधी रोड फ्लाईओवर शामिल ने। पुलिस ने लोगों नूं यात्रा करन तो पहला जानकारी लैन ते गैर जरूरी यात्रा तो बचन दी सलाह दित्ती है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमीशन दे कमेटी दे प्रधान हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों वल्लों गुरद्वारा बंगला साहब च दाखिल होण मगरों पुलिस नूं गुरद्वारा साहब च दाखिल होण दी इजाजत देण दे मुद्दे ते आम आदमी पार्टी दे कुछ आगुआं वल्लों राजनीति करन दी सख्त निंदा कीती है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लैके जबरन गुरद्वारा हाल च दाखिल होए ते नारेबाजी कीती। श्री कालका ने कहा कि गुरद्वारे दे अंदर किसी भी तरह दा विरोध प्रदर्शन ना तो बर्दाश्त किया जाएगा तो ना ही इसकी इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरद्वारा कमेटी ने प्रदर्शनकारियों को गुरद्वारे तो हटाने लिए पुलिस को बुलाया सी। भारत ने कहा कि दिल्ली में कल दी घटनावां बारे मनुखी अधिकारों लिए हाई कमिश्नर के दफ्तर दी चिंतावां बेबुनियाद और देश के अंदरूनी मामलों च बेलोड़ी दखलअंदाजी का संकेत ने। जिनेवा च भारतीय स्थाई कमिश्नर ने एक बयान में कहा कि मनुखी अधिकारों लिए हाई कमिश्नर के दफ्तर अपने हुक्म मुताबक दूजे मुल्कों में निरपक्षता पक्षपात

0: अनुसार ने मुताबक चलन गया। देवी दुर्गा की पूजा का 9 दिन का त्यौहार नवरात्रे आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह नाल शुरू होया। साउदी अरब के रियाद कौमांतरी हवाई अड्डे से हुए हमले च 12 लोग मारे गए ते 300 तो वध जख्मी। भारत और वैसट इंडीज दरमियान मर्दा का तीजा 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच अज इंदौर च खेडिया जाएगा। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरों का अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे दोपहर 1:10 ते। नमस्कार।
1: मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। आप सुनते हैं जुलिस गोल्ड के साथियों पासों कुछ मसीही भजन।

0: 10 लाख की लॉटरी मेरी।
1: फर्जी ऑफर्स तो सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनो सुचेत रहो।
4: श्रोतियां दी जानकारी ली सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवें प्रसारण समय दा ध्यान रखण।

जेड़ी गल असी बोलचाल दी भाषा च नहीं कर सकते लोक गीतां दा सहारा लेके बखूबी कह दिंदे आ। लोक गीतां दे वख-वख रूप ने जन्म तो लेके अंत समय तक जिन्हां विच

ज्ञान विज्ञान दा एह अंक लैके असी हाजिर हाँ। सारे सुनने वालियां नूं नमस्कार। अज इस विच डॉक्टर अमृतपाल कौर होरां दी वार्ता होएगी सुपर फूड्स। इस अलावा विज्ञानिक तत्थ ते खबरां होणगियां। जिवें कि बहुत सारे दिन महत्वपूर्ण हुंदे ने और असी दिनां दी वी गल करदे हाँ, इस बारे जानकारी लैंदे हाँ। ते अंतरराष्ट्रीय आफत जोखम घटाओ दिवस हर साल 13 अक्टूबर नूं पैंदा है, ते फिर जानदे हाँ इस बारे। जिवें कि असी दस्सिया कि हर साल 13 अक्टूबर नूं अंतरराष्ट्रीय आफत जोखम घटाओ दिवस मनाया जांदा है, ते इस दिन दा मुख उद्देश लोकां, सरकारां ते वख-वख संस्थावां नूं कुदरती ते मनुखी कारणां नाल पैदा होण वाली आफतां दे खतरियां बारे जागरूक करना ते इन्हां दे प्रभावां नूं घटाउण लई तैयार करना है। भूचाल, हड़, बदल फटना, सुनामी, सोका, जंगलां दी अग, गर्मी दीआं लहरां ते उद्योगिक हादसे मनुखी जीवन संपत्ति ते वातावरण नूं भारी नुकसान पहुंचा सकदे ने। जे हुण असीं आफत दी गल करिए तां आफत नूं हमेशा रोकिया नहीं जा सकता, पर इस नाल होण वाले नुकसान नूं काफी हद तक घटाया जा सकता है। इस लई आफत प्रबंधन दा सब तों महत्वपूर्ण हिस्सा पहलां तों तैयारी है। जे किसे इलाके विच हड़ दा वधेरे खतरा है तां निकासी प्रबंध, सुरक्षित थावां, चेतावनी प्रणाली ते एमरजेंसी संचार दी योजना पहलां ही तैयार होनी चाहीदी है। ते इसे तरह भूचाल प्रभावित इलाकियां विच इमारतां दी उसारी भूचाल रोधी मापदंडां अनुसार करना बहुत ही जरूरी है। अज मौसम विज्ञान, उपग्रह रडार, मोबाइल संचार ते डिजिटल टेक्नोलॉजी दी मदद नाल कई आफतां बारे पहला चेतावनी जारी कीती जा सकती है, पर चेतावनी तद ही प्रभावशाली हुंदी है जदों लोक उस नूं समझण ते उस अनुसार तुरंत कारवाई करन। इस लई स्कूलां, कॉलेजां, पिंडां ते शहरी इलाकियां विच नियमित मॉक ड्रिलां करवाउणियां चाहीदियां ने। परिवारिक पद्धर ते वी आफत नाल निजिठण लई तैयारी कीती जा सकती है। हर परिवार नूं इक एमरजेंसी किट तैयार रखनी चाहीदी है, जिस विच की पीण वाला पानी, सुक्का भोजन, जरूरी दवाइयां, टॉर्च, वाधू

0: साहित्यिक पत्रिका परिमल में आप सबका अभिनंदन। आज आपकी नजर कर रहे हैं एक परिचर्चा जिसका विषय है तकनीक के युग में साहित्य के समक्ष चुनौतियां। प्रतिभागी हैं डॉक्टर बलवेंद्र सिंह, डॉक्टर अजय शर्मा एवं डॉक्टर तरसेम गुजराल।
1: सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम स्टूडियो में एकत्रित हुए हैं तकनीक के युग में साहित्य के समक्ष चुनौतियाँ। तो मैं सबसे पहले अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि हमारे स्टूडियो में जो मुख्य मेहमान हैं उनमें डॉक्टर बलवेंद्र, जो DAV कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर तरसेम गुजराल, शिरोमणि साहित्यकार हैं। और मैं बहुत ही अच्छा विषय लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, तो अभी हम उसके लिए बातचीत करेंगे। तरसेम जी, मैं सबसे पहले तो आप ही से शुरू करना चाहता हूँ कि इस तकनीकी युग में, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, उसमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं साहित्य को, कैसे हैं वो चुनौतियाँ, किस तरह से आप देखते हैं उन चुनौतियों को?
2: पहले तो अजय जी, मैं ये बता दूँ कि तकनीक ने बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में लाया है
1: जी।
2: एक वक्त में हम कलम और कागज़ पर काम करते थे,
1: ठीक है जी,
2: अब उसकी जगह उंगलियां चलती हैं कीबोर्ड पर।
1: हाँ जी।
2: तो पिछले 10-15 साल में ये असंभव हो गया है कि आप अपनी पांडुलिपि हाथों से तैयार करें और फिर उसे किसी प्रकाशक को भेजें
1: जी,
2: और फिर वो उस पर निर्णय और फिर बताए। अब ये सब कुछ आसान है, इसलिए हो गया है कि आप अपनी पांडुलिपि तैयार कर लेते हो
1: जी,
2: फिर प्रकाशक से बात करते हो और उसे ईमेल से भेज देते हो, तुरंत उसको मिल जाती है, कुछ ही दिनों में निर्णय आ जाता है और शुद्धियाँ जो हैं वो कम होती हैं क्योंकि आपने खुद उसकी टाइपिंग की व्यवस्था सारी देखी हुई होती है
1: जी।
2: तो तकनीक ने ये बड़ा बदलाव हमारे जीवन लाया है। फिर दूसरा, हमारे पास फ़ोन है, कितनी सुविधाएं हमारे पास
1: जी।
2: हैं। पहले हम रजिस्ट्री करवाने के लिए, अपनी रचना भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाकर घंटों खड़ा होते थे,
1: जी
2: अब ईमेल से हम तुरंत ईमेल कर देते हैं तो पहुँच जाती है।
1: जी
2: ये समय और गति सब कुछ कंट्रोल किया है
1: जी,
2: इसने, इन तकनीक ने,
1: बिल्कुल ठीक है आप।
2: लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, चुनौतियां
1: जी
2: बहुत हैं। तो अगले दौर में जब भी इसकी विशेषताओं पर बात होगी तो हम चुनौतियों को
1: ठीक है,
2: डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल बलविंदर जी से आप पूछ लें
1: बिल्कुल।
2: थोड़ा सा।
1: आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने किताब को छपने के प्रोसेस के बारे में बात की, कैसे लिखी जाती है, कैसे छपती है, आप बहुत जल्दी छप जाती है, बहुत लिखी जाती है। लेकिन बलविंदर जी, यही सवाल है कि अभी चुनौतियों के बारे में हम बात करेंगे कि चुनौतियाँ क्या हैं हमारे सामने।
3: डॉक्टर अजय शर्मा जी, मेरी बुद्धि विवेक में यह बात आती है कि एक तो अनुभव के प्रमाणीकरण की चुनौती है
1: जी,
3: कि अनुभव का टटकापन, संवेदना की सत्यता, यह अपने आप में एक चुनौती है
1: जी,
3: क्योंकि हम जिस तकनीक के युग में हैं
1: जी,
3: वहाँ बहुत से AI कृत्रिम बौद्धिकता के उपकरण मौजूद हैं,
1: बिल्कुल
3: वो कई हैं, उनकी हम क्या बात करें। तो ऐसे में

0: जो रचनाकार का निजी नितांत अनुभव, सत्य अनुभव, प्रामाणिक अनुभव होता था,
1: जी
0: उस संबंध में चुनौती है
1: जी
0: कि बहुत सारा ऐसा साहित्य उत्पादन के रूप में हमारे समक्ष आ रहा है कि उसमें संवेदना के क्षरण को साफ साफ देखा और आंका जा सकता
1: जी
0: है। यह बड़ी चुनौती है,
1: हाँ,
0: अनुभव के प्रमाणीकरण से संबंधित चुनौती है। ओ गुजराल साहब कह रहे थे, निसंदेह यह प्रायोगिक चुनौतियों के अंतर्गत परिगणित हो सकता है कि वहाँ ठीक है, रचना को शब्दबद्ध करना भी तो अपने आप में चुनौती है।
1: जी,
0: कितने वरिष्ठ साहित्यकार हैं जो कर पाते हैं।
1: जी,
0: लीलाराज जगूड़ी वो सीधे कह रहे, भाई यह सारा तामझाम मैं नहीं कर पाता।
1: जी,
0: साहित्यकार वरिष्ठ है लेकिन तकनीक उसे चुनौती दे रही है
1: जी,
0: और वह उस अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, तो यह अपने आप में बड़ी चुनौती है। फिर अधिकाधिक पाठकों तक पहुंचने का, यानी प्रसारित होने का, यह भी एक चुनौती का विषय है। अब ठीक है, हम तकनीक के युग में, ऑडियो बुक के ज़माने में हैं
1: जी,
0: कि हम पंक्ति को, मंत्र को टैप करते हैं, गीता परस गोरखपुर की पूरी पुस्तक
1: श्लोक
0: पढ़ती है, व्याख्या करती है। कितने साहित्यकार ऐसी पुस्तक छपवा सकते हैं, कितनी अकादमियां आज ऐसी पुस्तकें
1: छापती
0: हैं, तो यह भी अपने आप में चुनौती है। बाकी हम बात को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत।
2: मैं अजय जी इनकी बात को थोड़ा विस्तार देना चाहूंगा।
1: बिल्कुल दीजिए।
2: राजीव सेठ अब दिवंगत हो गई हैं
1: जी,
2: तो आप जानते हैं वो कितनी समर्थ कथाकार थी
1: जी।
2: उन्होंने एक बार मुझे फोन पे कहा कि तरसेम ये जो नई प्रौद्योगिकी आ गई है, फेसबुक है, ये ईमेल है, ये सब, इसने हम बूढ़ों को साहित्य से बाहर कर दिया है
1: जी।
2: तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी, जैसे इन्होंने जगूड़ी की बात की, मैं राजीव सेठ के हवाले से कह रहा हूँ, एक पूरी पीढ़ी मतलब साइलेंट हो गई
1: जी,
2: इसकी प्रौद्योगिकी क्रूरता के हिसाब से साइलेंट हो गई। लेकिन ये गतिशीलता है, विकास है, और विकास इस दृष्टि में अंधा होता है, कोई पिछड़ गया तो पिछड़ गया,
1: बिल्कुल
2: उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ना है
1: जी।
2: दूसरी बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो रिपोर्ट है 1933 में प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह
1: जी।
2: ईदगाह में बच्चों के लिए खिलौने महत्वपूर्ण होते हैं,
1: बिल्कुल
2: सब बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं, तो तकनीकी विकास के रूप में वहाँ चिमटा है
1: जी,
2: तो वो लड़का हामिद जो है वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है
1: जी।
2: अब चिमटा संवेदना से जुड़ा हुआ है
1: जी,
2: क्योंकि दादी के हाथों की उंगलियों जलती हैं, रोटी पकाने हुए हाथ जलते हैं, तो चिमटा उनको मदद करेगा, तो उसमें संवेदना और तकनीक दोनों एक साथ पैरल हो रहे हैं
1: जी।
2: संवेदना के साथ दिक्कत नहीं कर रहा तकनीक
1: जी,
2: लेकिन अब तकनीक इतनी हावी हो गई वो दिमाग में इतनी हावी है कि इससे हमारी सामाजिकता को ह्रास हुआ है
1: जी।
2: हम सोशल मीडिया पर आके वो टिप टिप तो कर लेते हैं, मैसेज दे दिया, मैसेज ले लिया, एक का जन्मदिन आया तो हमने 250 में से पढ़ लिए, देख लिए, लेकिन जो हमदर्दी है वो हम जो कंधे से कंधे मिलाकर जो बात कर सकते थे, किसी के दुख के साथ शरीक हो सकते थे, वो गायब हो गई है,
1: बिल्कुल
2: सामाजिकता का ह्रास हुआ है तकनीक में
1: जी।
2: ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है
1: जी जी,
2: ये संवेदना से जुड़ी हुई बात है
1: जी। आपने बिल्कुल सही कहा, सूचना और क्रांति के दौर में हम लोग तकनीक से जुड़ तो गए हैं लेकिन तकनीकी खामियां भी हैं, हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने, बलविंदर जी ने भी कही, प्रमाणिक अनुभव हमारे पास जो है ना, उनकी भी कहीं ना कहीं कमी आई है। मैंने एक रोबोट की कहानी किसी की पढ़ी, बहुत साल पहले पढ़ी थी। रोबोट सारे काम करता है, वो हर चीज़ कर रहा है, लेकिन वो आखिर में आकर, वो जब जो जिसके पास रोबोट होता है वो कहती, मैं हार गई हूँ क्योंकि ये मेरे से संवेदना प्रकट नहीं कर सकता।
2: हाँ।
1: वो सब कुछ कर सकता है।
2: हाँ।
1: तकनीकी युग में सूचना क्रांति सब कुछ कर सकती है लेकिन संवेदना कहीं ना कहीं हमारी मार रही है। हमारी संवेदना को प्रकट करने के लिए हमें अपने भाव चाहिए, हमारे अनुभव चाहिए, वो बिल्कुल निजी होते हैं और हर इंसान के, हर व्यक्ति के अनुभव अलग होते हैं। तो बलविंदर जी, आप कैसे देखते हैं इस चुनौती को कि इस युग में किताब छपवाना तो आसान हो गया है लेकिन किताब लिखना और लिखकर अच्छी किताब लिखना ये बहुत मुश्किल हो गया, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
0: डॉक्टर अजय शर्मा जी, आपकी यह बात बड़ी सटीक है कि विशुद्ध साहित्य के समक्ष चुनौतियां मुंह बाए हैं तो हैं
1: जी।
0: बाजार आधारित लेखन हो रहा है
1: जी,
0: त्वरित आस्वादन के लिए

0: कई प्लेटफॉर्म पर आप लेखन को देख सकते
1: जी
0: हैं। आप देखते हैं कि हड़बड़ी का लेखन है,
1: जी
0: उसमें अशुद्धता को दरकिनार किया जा रहा है कि गतिशील लेखन है। लेकिन इस गतिशील लेखन में जो परंपरागत विशुद्ध साहित्य था, जो मांस मज्जा के साथ लिखा जाता था, मानवीय करुणा दया प्रेम की अभिव्यक्ति करता था, उसका ह्रास हो रहा है। यह ठीक वही बात है कि संवेदना का क्षरण हो
1: जी
0: रहा है। यद्यपि तकनीक के इस युग में साहित्य की विधागत परिवर्तनों की कई वानगियां देखी जा सकती
1: जी
0: हैं
1: बिल्कुल
0: कि आप फेसबुक फिक्शन लिख रहे हैं,
1: जी
0: ब्लॉगिंग हो रही है,
1: बिल्कुल
0: शॉर्ट मूवीज लिखी जा रही हैं,
1: बिल्कुल
0: बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से की जाने वाली कंटेंट राइटिंग हो रही है,
1: जी
0: पॉपुलर लिटरेचर के दायरे में सभी को लाना चाहिए
1: जी
0: कि पॉपुलर लिटरेचर हो रहा है, लेकिन कोई क्लासिक रचना, कालजयी रचना नहीं आ रही
1: जी
0: है, क्योंकि हमारे पास समय का अवकाश ही नहीं है,
1: बिल्कुल
0: हमारे पास आस्वादन के लिए समय ही नहीं है। हम व्यापार और वाणिज्य के उपादान बनते जा रहे हैं
1: बिल्कुल
0: और स्वयं को उस बाजार में पा रहे हैं। तो
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता है कि यह जो प्रायोगिक चुनौतियों के साथ साथ जो विधागत परिवर्तन हो रहे हैं, यह भी चुनौतियां हैं कि जो परंपरागत कहानी, लघु कथा या उपन्यास या नाटक लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, वो पॉपुलर लिटरेचर लिख पा रहे हैं या
1: बिल्कुल
0: नहीं लिख पा रहे,
1: जी
0: क्योंकि पाठकों तक रीच तो उसी की है,
1: बिल्कुल
0: उपलब्धता तो उसी की है, और आजकल की गतिशीलता में पाठक भी उसी साहित्य के हैं,
1: जी
0: आस्वादन उसी साहित्य का किया जा रहा है। तो इस दृष्टि से भी
1: बिल्कुल
0: विचार को आगे बढ़ाया जाना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो बाजारीकरण का दौर है ना, जो बाजार है, बाजार धीरे धीरे धीरे धीरे एस्टेब्लिश होता है। एक दिन में बाजार हमारे ऊपर आकर पाँव नहीं पसारता। मुझे याद है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक वो सेमिनार था बठिंडा में, तो मेरे साथ मुझे हिंदी उपन्यासकार के तौर पर बुलाया गया था और गुरदयाल सिंह जी पंजाबी उपन्यासकार के तौर पर बैठे थे। वो बैठे थे तो मैं डर रहा था मैं क्या बोलूँगा। वो मेरे साथ बैठे बैठे कहने लगे, मेरा मड़ी द दीवा जो है वो 500 कापी छपी थी, और जो गुलचन नंदा का नॉवल है वो 1 लाख 2 लाख छपता है स्टार्ट में ही। तो पॉपुलर लिटरेचर कहीं ना कहीं शुरू से ही रहा है। ये नहीं है कि पॉपुलर लिटरेचर आज लिखना शुरू हुआ, वो शुरू से रहा, लेकिन फिर भी उसके कुछ मायने थे। कम से कम पॉपुलर लिटरेचर जो बाजार में आता था उसको पढ़कर मेरे जैसे पाठक पैदा हुए, लिखने की आगे एक परंपरा चली। अगर वो ना तो शायद हम पढ़ ही ना पाते, कठिन मतलब इतना मतलब एस्थेटिक। मुझे लगता है कि पॉपुलर लिटरेचर की अपनी एक भूमिका तो है,
0: उत्सुक करता था,
1: बिल्कुल
0: लालायित
1: सरकार
0: करता
1: बिल्कुल
0: था,
1: लालायत करता आगे
0: पाठक
1: पढ़ने के
0: वर्ग
1: लिए,
0: बनाता
1: बिल्कुल
0: था,
1: पाठक वर्ग बनाता था।
0: लिखने का मत
1: हाँ
0: पैदा
1: बिल्कुल।
0: करता था।
1: अब सोशल मीडिया में क्या है, सुबह उठो स्क्रॉल करो, आपको किसी की लघु कथा, किसी की कविता, किसी की कहानी, इतनी लंबी कहानी कौन पढ़ेगा सोशल मीडिया, बताइए। वो कहीं ना कहीं हमें शब्द ही शब्द को खाने लगे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। आप ये बताइए कि क्या ये सही है इस दौर में? आप कविता लिखते हैं तो फेसबुक पर डाल दें, कहानी लिखते हैं तो फेसबुक पर डाल दें, चलो छोटी सी लघु कथा, छोटी सी दो चार लाइनों की पंक्ति तो हो सकती है, लेकिन क्या लंबी लंबी कहानियाँ, क्या फेसबुक उस लेखक को आगे ले जाने में कोई सहायता करेगी या उसको मार देगी, ये बताइए।
0: एक तो बात आपने पॉपुलर साहित्य की कही,
1: जी
0: कभी भी पॉपुलर साहित्य को साहित्य में जगह नहीं मिली,
1: ठीक है
0: साहित्य ने उनको नहीं पहचाना,
1: जी
0: साहित्य ने उसी को जगह दी है जिसमें मानवीय गरिमा, मानवीय संघर्ष,
1: जी
0: मानवीय इतिहास, उसकी झलक, उसके द्वंद, उसके पीड़ा, वो ध्वनित होती है, उसको जगह दी है।
1: जी
0: वो बायबी जो होती है, फालतू की बातें होती हैं, उसमें मान तो लगता है लेकिन मान टिकता नहीं है,
1: लेकिन अब वह विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का
0: पाठ्यक्रम हिस्सा
1: हिस्सा
0: बनना जा
1: बनना
0: रहा है।
1: बिल्कुल
0: नहीं, वो तो गलत चीज़ें तो जल्दी अडॉप्ट होती हैं, गलत चीज़ें जल्दी अडॉप्ट होती हैं, घटिया चीज़ें जल्दी पॉपुलर होती
1: नहीं, वो
0: हैं।
1: सालों साल लग गए, वो
0: हल्के
1: रानू और गुलचंदा सालों से लिख रहे हैं जब हम छोटे थे,
0: नहीं,
1: अब
0: वो
1: जाकर उनको मान्यता प्राप्त, अब कहने लगे हैं कि वो भी एक लिटरेचर का हिस्सा है, वो चाहे लाइट लिटरेचर है
0: कभी कभी
1: चाहे
0: नहीं
1: सीरियस
0: होगा, कभी
1: लिटरेचर
0: नहीं
1: है।
0: होगा। शेखर की जीवनी, रंगभूमि, यशपाल के उपन्यास, प्रेमचंद के उपन्यास, ये सभी सदा रहेंगे और सदा सदा से
1: ये
0: हैं,
1: कालजयी
0: सदा रहेंगे,
1: उपन्यासों की
0: सदा रहेंगे,
1: बात हो,
0: कालजयी उपन्यास डॉक्टर
1: है।
0: गुजराल, मुझे लगता
1: कालजयी
0: है
1: उपन्यास
0: कि
1: कैसे बनता है? जी
0: ऐसे ही नहीं बन जाता कालजयी उपन्यास।
1: जी जी
0: आपके पिता ने वो पढ़ा है, आप वो बेटे को बताते हैं ये कालजयी उपन्यास है, इसमें ये खूबियां हैं, जीवन है, संघर्ष है, उस समय की दिक्कत है, उस समय की
1: समय
0: परेशानियां
1: के
0: हैं,
1: पार चला जाता है
0: समय से पार जाता है वो।
1: जी
0: तो आप रामचरितमानस को आज भी पढ़ते हैं, गीता को आज भी पढ़ते हैं, उसमें
1: जी
0: गीता में आज भी जो रहस्य हैं वो जीवन देगी।

0: वही हैं।
1: बिल्कुल
0: आप गुरु ग्रंथ साहब से वाणी लेते हैं, प्रकाश सुबह वाक लेते हैं,
1: जी।
0: तो दिन भर की दिनचर्या को अडॉप्ट करने के आपको रास्ते मिलते हैं, कबीर को सुनते हैं,
1: लेकिन इसे
0: आपको
1: हम
0: रास्ते मिलते
1: अलौकिक
0: हैं।
1: साहित्य में परिगणित नहीं करते हैं, इसे हमने मानवता के उदात्त आदर्शों पर ही रखा है, जी
0: इसे हम लौकिक साहित्य में परिगणित नहीं करते हैं। निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं वो खतरा तो वो है, बता ही दे रही
1: बिल्कुल
0: है
1: जी
0: कि ऐसा हो रहा है। यह सामान्यीकरण तकनीक के कारण ही हुआ
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: कि हम
1: ये
0: इसे
1: बिल्कुल
0: भी
1: सही,
0: साहित्य दिया जाए,
1: जी
0: कि
1: बिल्कुल सही
0: आज एक पुस्तक छपवाने के पश्चात पाठक वर्ग पैदा करना के बजाय, जैसे डॉक्टर अजय शर्मा कह रहे हैं, एक कविता लिखकर 5,000 पाठकों के बीच सीधा डाल देना
1: जी
0: पहुंच, यह रीच तो बढ़ी है, यह तकनीक ने दी है। हाँ, उसमें भाषागत चुनौतियां हैं, उसमें
1: बिल्कुल
0: संवेदनात्मक चुनौतियां हैं, वही प्रामाणीकरण, अनुभव के प्रामाणीकरण की चुनौती है, वो बनी हुई है, जस की तस है। और एक और चुनौती जिसकी ओर हम सबको ध्यान देना चाहिए, वह है कंटेंट चोरी की,
1: बिल्कुल
0: जिस प्लेजरिज्म है,
1: प्लेजरिज्म की
0: नकल है, और पूरे का पूरा एक, इसको कहना चाहिए कि यह षड्यंत्र है।
1: बिल्कुल
0: और आप फेसबुक देखिए, आप इंस्टा देखिए, आप व्हाट्सएप देखिए और दूसरी सामाजिक ऐप देखिए, उनमें बहुत सा ऐसा मेटीरियल है, सामग्री है जो चोरी की है,
1: बिल्कुल
0: मूल कुछ है, और फिर उसमें तकनीक के दौर में यह भी नहीं देखा गया कि उसका विशुद्ध रूप क्या है। बहुत सी बातें जो हैं
1: जी
0: डिस्टॉर्ट करके पाठकों के बीच आ रही हैं,
1: बिल्कुल
0: अपने मूल से बिल्कुल अलग थलग होकर पाठकों को भ्रमित करने वाली, यह भी अपने आप में चुनौतियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल है।
1: बिल्कुल आपने
0: लेखक
1: बड़ी
0: काम, अजय जी,
1: अच्छी
0: लेखक काम संवाद का है, का
1: जी बिल्कुल ठीक बात है,
0: संवाद स्थापित करना है,
1: बिल्कुल
0: उसमें
1: बिल्कुल
0: तकनीक के चलते जो संवाद है वो भ्रम की स्थिति में चला गया,
1: बिल्कुल चला गया है
0: संवाद नहीं हो रहा।
1: बिल्कुल
0: गोष्ठियों को आपने 4-5 लोगों को उस पर फेसबुक पे बिठा कर लिया,
1: बिल्कुल
0: लेकिन जो मनुष्य की उपस्थिति है, जो विद्वान की उपस्थिति है, उसने कई विषयों से कई टर्म्स निकालनी है और आगे उसको बढ़ाना है, वो
1: जी
0: नहीं हो रहा,
1: वो नहीं हो रहा है ना, कहीं ना कहीं
0: संवाद
1: नदारा
0: टूट रहा है।
1: नदारदा कहीं ना कहीं। आपने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन तरसेम जी एक बात बताइए कि जैसे हम लोग पहले जब हम थे तो कुछ रचना लिखते थे, किसी पत्रिका में भेजते थे, किसी अखबार में छपती थी, तो एक नाम बनता था, दूर तक जाता था। लेकिन अब सारी अखबारों से साहित्य गायब है, बहुत सारी पत्रिकाएं बंद हो गई हैं। अब साहित्यकार के सामने ये भी चुनौती है, वो छपे कहाँ, अपने आप को प्रेजेंट कहाँ करे, उसके पास तो माध्यम क्या है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है,
0: आभासी दुनिया
1: हाँ
0: है
1: आभासी
0: पूरी की
1: दुनिया
0: पूरी।
1: है, तो वो करे भी क्या, वो जाए भी कहाँ, इसका
0: नहीं,
1: हल भी क्या है।
0: आभासी दुनिया ने कितनी नई लड़कियों को कवि बना दिया है,
1: हाँ तो
0: ये भी आप
1: ठीक, तो
0: देखो,
1: फिर ये अच्छी बात है,
0: ये तो
1: बुरी
0: अच्छी
1: बात तो
0: बात
1: नहीं है।
0: है।
1: हाँ बिल्कुल
0: दूसरा, ये खतरे सारे जो इन्होंने गिनवाए बलविंदर जी ने, वो सारे खतरे मौजूद हैं, वो तकनीक के चलते भी मौजूद हैं,
1: और
0: तकनीक से, मुझे तकनीक
1: लगता
0: ने उन
1: है
0: खतरों को बढ़ावा दिया है। जी
1: गुजराल साहब जिस बात को रेखांकित कर रहे हैं, एक आवश्यकता भी जन्मती है, वो बिल्कुल
0: आवश्यकता है कि वरिष्ठ साहित्यकार और जो नए साहित्यकार हैं, इनको तकनीक संबंधी जानकारियों से लैस करना,
1: बिल्कुल
0: और यह काम अकादमियों का है, भाषा विभागों का है,
1: बिल्कुल
0: विश्वविद्यालयों का है, बड़े बड़े संस्थानों का है, कि वे अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दें और नए और पुराने लेखकों के मध्य एक सेतु का काम करें, वह सेतु तकनीक बनेगी और तकनीकी सेतु बनेगा, और जब उससे लैस होंगे तो एक दूसरे को उससे लाभ होगा,
1: लाभ होगा
0: पाठक को भी होगा, वरिष्ठ रचनाकार को भी होगा, कनिष्ठ रचनाकार को भी होगा। मुझे लगता है इस दिशा में भी काम होना
1: काम होना
0: चाहिए,
1: चाहिए, बिल्कुल होना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: होना चाहिए।
1: देखिए
0: जो
1: कहते हैं
0: आपने
1: ना
0: अखबारात की बात उठाई,
1: जी
0: वो व्यावसायिक मामला है सारा,
1: जी
0: उनके जो एनालिसिस करने वाले हैं, उन्होंने जा जा के कुछ ही लोगों से जा जा के कहा, जनता के पास जाते हैं वो, कुछ 2-4 लोगों के से बात की, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ता जी कविता, मैं तो नहीं
1: जी
0: पढ़ता जी कहानी, उन्होंने दे दिया जी निष्कर्ष निकाल के दे दिया जी, ये कहानी हम बंद करो छापना। अरे भाई, इससे तो आपकी अखबार जाती थी, रविवार और बुधवार संस्करण जो है अखबारों के, वो ज्यादा बिकते थे, और उनकी संख्या अब कम हो गई है, और अखबारें भी धीरे धीरे प्लान कर रही हैं, प्लान कर जाएंगी इस सब तकनीक के मौसम में।
1: नहीं
0: पेपर्स,
1: देखिए
0: ई
1: ई
0: पेपर आ
1: पेपर्स
0: जाएगा,
1: के ऊपर
0: प्रिंट
1: आ
0: ई
1: जाएंगे
0: पेपर
1: वो
0: आ
1: तो
0: गया।
1: ठीक है, यूट्यूब चैनल आ गए हैं।
0: हाँ, तो यू
1: नहीं एक बात और भी है तरसेम जी,
0: नहीं,
1: जो
0: आप देखिए ना, सूचना का विस्फोट कितना हो रहा है, सूचना का विस्फोट इतना ज्यादा हो रहा है कि ज्ञान पीछे चला गया,
1: लेकिन
0: हमने
1: साहित्य
0: ज्ञान को धकेल दिया
1: सूचना
0: है।
1: तो साहित्य नहीं है, वो
0: नहीं, वो
1: सूचना
0: साहित्य नहीं है, सूचना है, सूचना का विस्फोट हो रहा है, मैं विस्फोट कह
1: हाँ
0: रहा
1: वो
0: हूँ,
1: है
0: है
1: असल में तरसेम
0: वो
1: जी
0: इतना विस्फोट ज्यादा, इतना भयंकर है, उसने आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया
1: जी
0: है,
1: जी
0: और भ्रम जाल इतना

0: फैला दिया है कि आपको अपनी सच्चाई पर यकीन नहीं होने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ, ये जो जो झूठ बोल रहे हैं वो सच कह रहे हैं।
1: बिल्कुल, आपने
0: झूठ का प्रचार इतना ज्यादा हो रहा है।
1: सही मुद्दा उठाया, लेकिन एक बात है, अखबारों में जब, जहां तक मैं अखबारों की बात करता हूँ, अखबारों में पहले रेजिडेंट एडिटर होते थे, वो तय करते थे क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, ये साहित्य का पन्ना जाएगा, ये मैगजीन का पन्ना, ये जाएगा। लेकिन अब क्या है, अब GM आ गए हैं, CGM आ गए हैं, वो क्या करते हैं, पहले होता था कि ये हमने लगा दिया है, अब जो जगह बची है वहां पर अपनी एड लगा दो। अब क्या होता है कि वो पहले डमी दे देते हैं पेपर की, वो कहते हैं डमी है ये हमने दे दी है, अब जो जगह बची वहां पर आपने जो लगाना लगा दो, साहित्य लगाना साहित्य लगाओ, मैगजीन की और चीज लगानी और चीज लगाओ। यानी ये एक परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या कुदरत का नियम है। तो ये आज के दौर में, बाजारीकरण के दौर में, मैं कहूँ रंगीन पन्नों ने जगह तो ले ली है, किटी पार्टियों की फोटो तो लगनी शुरू हुई, लेकिन साहित्य कहीं ना कहीं हाशिए पर धकेल दिया गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसको कैसे हम देख सकते हैं, आने वाले समय से कैसे नए पाठक पैदा कैसे होंगे, नए लेखक पैदा कैसे होंगे, जब उनको छपने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी।
0: जो मानसिक मेधा है ना, वो फास्ट फूड की तरह अप्लाई नहीं की जा सकती।
1: जी,
0: आपने तुरंत बनाया, तुरंत सप्लाई कर दिया, वो ये हो गया हो गया
1: जी,
0: बरसों लग जाते हैं एक एक उपन्यास में काम करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तभी जाके वो उपन्यास आकार में आता है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पठनीयता बनती है, गहराई बनती है।
1: जी,
0: शेखर जी ने क्या एक दिन में लिखा गया
1: जी,
0: था
1: जी,
0: दोन के किनारे एक दिन लिखा
1: जी,
0: गया
1: जी,
0: शांति और युद्ध क्या कितने समय लगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और माँ कब तैयार हुआ होगा, गोदान कितने बरस लगे होंगे,
1: बिल्कुल।
2: लेकिन जिस त्वरा में हम जी रहे हैं, उस त्वरा में यही तो एक चुनौती
1: है
2: कि हम पेशेवर लेखन को मतलब पेशेवर लेखन परंपरागत लेखन को लगातार चुनौती दे रहा है, ये तकनीक के कारण हो रहा है, और इस पर बात होनी चाहिए।
0: नहीं, इससे तो
1: देखो
2: आप देखिए कि एक संगोष्ठी है, साहित्यिक संगोष्ठी है, उसमें ऑनलाइन मोड भी है, ऑफलाइन मोड भी है, हाइब्रिड मोड में रखा हुआ है, अब उसकी रीच तो बढ़ रही है।
1: बिल्कुल,
2: हम इससे कैसे इनकार कर सकते हैं, एक नया पाठक वर्ग बन रहा है,
0: रीच बढ़ रही है, गुणवत्ता का क्या होगा, गुणवत्ता कम हो रही है कि नहीं हो रही।
2: हाँ, यह चुनौती है।
0: एक वरिष्ठ साहित्यकार का प्रेजेंस है, वो उपस्थित है उस गोष्ठी में।
1: नहीं, चुनौती ये भी है, आपको अब आप उस पीढ़ी के हैं, आपको गुणवत्ता वो लग रही है, जो नई पीढ़ी उसकी गुणवत्ता भी बदली है समय के साथ साथ,
2: निकष भी बदले, साहित्य के निकष भी बदले हैं।
0: सत्यम शिव सुंदर तो वही रहेगा,
1: नहीं वो वही रहेगा, लेकिन उसके
0: सत्यम शिव सुंदर नहीं बदलेगा भैया, मेरे कुछ भी हो जाए,
1: उसको देखने के वो जो बदलेंगे पैरामीटर बदलेंगे, जरूर बदलेंगे आने वाले समय में, समय के हिसाब से बदलेंगे।
2: डॉक्टर साहब, कभी वो एक पंक्ति ऐसी थी कि लो अब मुस्कान भी प्यारे इमोजी बन गई झूठी, जरा सा टैप करते ही वो खुद ही खिल गई।
1: सही बात
2: है ना, तो इस तरह की बातें हो रही हैं, और यह अपने आप में चुनौतियां हैं।
1: बिल्कुल चुनौतियां हैं,
2: निश्चित रूप से। डॉक्टर गुजराल जो कह रहे हैं कि वो मानवीय गरिमा है, वो जहां है वहां है, जो उदात्तता हमारा श्रेष्ठ साहित्य देता है वह देता ही है, उसे उसके पद से च्युत नहीं किया जा सकता।
0: सच्चे लेखक को इस सब से निपटते हुए, चुनौतियों को सामना करते हुए स्वस्थ रचना देनी है, सत्यम शिव सुंदरम का पालन करना है, इतिहास में जाना है, मनुष्य के संघर्ष को सामने लाना है, इसमें कोई इधर उधर नहीं हो सकता। उसके पात्र बदल सकते हैं, पात्रों की बातचीत बदल सकती है, भाषा का मोड़ बदल सकता है, लेकिन जो चीज़ें बीच में हैं, जो उसकी आत्मा है, वो वही रहेगी, वो सत्यता की ओर ले जाएगी, वो प्रेरित करेगी जीवन जीने के लिए, मृत्यु का अवगमन नहीं करेगी, वो निराशा में नहीं धकेलेगी, अवसाद में नहीं धकेलेगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन ये जो जितना ज़्यादा हम उसमें जा रहे हैं, हम तो सोचते हैं 2 मिनट में लिए क्या हो जाएगा, मैं 2 मिनट फेसबुक देख लेता हूँ, वो 2 मिनट के 20 मिनट हो जाते हैं
1: जी।
0: 20 मिनट आपके जीवन से गए, आपके जो पहले की तन्मयता बनी हुई थी वो डिस्टर्ब हो गई।
1: बिल्कुल,
0: उसको रीगेन करने के लिए आपको और समय चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आप रीगेन करते हो, नहीं कर पाते हो, यही अलग समस्या है।
1: देखिए तरसेम जी, बात ये है कि साहित्य कोई भी हो, विधा कोई भी हो, उसमें मानिए हम कहानी उपन्यास कुछ भी लिखते हैं, उसमें कथारस तो होना ही चाहिए ना।
0: कहानी में कथारस होना चाहिए, कविता में कविता होनी चाहिए।
1: चलो कविता में कविता और उपन्यास में भी कथारस चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: अब कथारस लेना तो उसके लिए फिर ज्वाइनस नहीं है, तो फिर वो जितना मर्जी आप विधवता झाड़ लें, जितना मर्जी बड़ा लिख लें, अगर कथारस नहीं तो पाठक नहीं पढ़ेगा, 2-4 पन्ने 10 पन्ने पढ़ेगा रख देगा वो।
0: कथारस तो बेसिक है।
1: हाँ, कथारस होना चाहिए ना।
0: फिर आपका उपन्यास

0: के पाठक को बांधता ही नहीं है
1: हाँ, तो फिर
0: तो
1: कथा
0: पढ़ा
1: रस
0: कैसे
1: होंगे।
0: जाएगा।
1: तो बहुत सारे उपन्यास हैं, इनमें कथा रस नहीं है, लेकिन वो बड़े उपन्यास हैं, वो कालजयी उपन्यास हैं बहुत सारे। लेकिन गुलशन नंदा के उपन्यास में कथा रस भरपूर है, रानू के उपन्यास में कथा रस भरपूर है, फिर वो कालजयी उपन्यास क्यों नहीं है, दोनों
0: उनमें
1: में क्या
0: जीवन
1: फर्क।
0: नहीं है, उनमें जीवन नहीं है, स्थायित्व नहीं है, उनमें मूल्य नहीं है, उनमें सामाजिकता की गहराई नहीं है, तो
1: ठीक है,
0: उथड़ापन है। हम मिले, हमने बातचीत की, कॉफ़ी पी, ये हुआ वो हुआ, उसकी शादी उसके साथ हो गई, ये हो गया, विच्छेद हो गया, वकील आ गया, तलाक हो गया, ये सब है, घटनाएं
1: मुझे हाँ
0: हैं,
1: मुझे याद आ रहा है,
0: गहराई
1: खिलौना
0: नहीं है।
1: खिलौना उपन्यास, खिलौना फिल्म बनी थी, वो उपन्यास भी था गुलशन नंदा का शायद, है ना, तो फिल्में भी बनी। खैर ये एक अलग मुद्दा, लेकिन फिर भी हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, सोशल मीडिया की बात करें, अब ये देखिए जो हमारी अगली पीढ़ी है, हमसे भी अगली पीढ़ी, उनको कंपोजिंग करनी नहीं आती, वो लिखना
0: है
1: नहीं आता, वो कैसे
0: ये
1: अपनी रचना।
0: चुनौतियां हैं
1: हाँ
0: और हमें
1: चुनौतियाँ
0: इन्हें
1: हैं,
0: स्वीकार
1: बिल्कुल
0: करना
1: करना
0: चाहिए।
1: चाहिए,
0: एक समय
1: बिल्कुल
0: था भारत में ज्ञान की वाचिक परंपरा रही
1: बिल्कुल
0: है,
1: हाँ
0: वेद वाचिक
1: बिल्कुल,
0: परंपरा में थे, श्रुति
1: श्रवण व
0: परंपरा में
1: श्रवण,
0: थे,
1: श्रुति परंपरा
0: और हमारे यहाँ छः छः
1: बिल्कुल
0: प्रातिशाख्य
1: बिल्कुल
0: होते थे।
1: होते थे,
0: जब भी हमें लगता था कि मिलावट हो रही है, छह ढंगों से उनका पाठ होता था, मिलावट सामने आ जाती थी।
1: बिल्कुल
0: आज अब तकनीक का उपयोग करते हुए कई प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और उस रचना की जेन्युइननेस, उसकी असलियत, वास्तविकता देखनी है तो आपको वो चुटकी बजाते ही, टैप करते ही सामने आ जाती हैं चीज़ें। आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसका सही रूप क्या है। यह तो तकनीक ने हमें दिया है,
1: नहीं,
0: लेकिन
1: तकनीक ने हमारी स्मृति का लोप भी किया है,
0: लेकिन
1: तकनीक ने हमारी स्मृति का लोप भी किया है, हमारी स्मृति का जी
0: लोप किया है
1: बिल्कुल किया
0: तकनीक
1: है,
0: ने।
1: इस
0: अब
1: प्रकार से तो
0: पहले हमें कितने फोन पर जबानी याद रहते थे,
1: बिल्कुल
0: अब जरूरत ही नहीं पड़ती तो हमारा हमारी मेधा उसमें काम ही नहीं करती। तो
1: बिल्कुल
0: अब स्मृति लोप हो जाएगा, हम इतिहास नहीं,
1: को स्मरण नहीं
0: तो
1: करेंगे।
0: तकनीक ने हमें अन्य दिशाओं में गतिशील भी बनाया है। हम जितना करते थे आज उस उतने ही समय में कितना अधिक
1: ज्यादा
0: काम करते
1: ज्यादा
0: हैं,
1: होता है काम, सही
0: कितने
1: बात
0: अधिक
1: है
0: हमारे पास जानकारियां हैं, हमारे यहाँ जो भी कृतियां हैं,
1: बिल्कुल
0: रचनाकार हैं, उनके नाम हैं इत्यादि इत्यादि, हमारे पास एक व्यापक जगत आ जाता है, साहित्य जगत सामने आ जाता है, वो तकनीक की देन
1: भाई
0: है,
1: साहब। वह
0: इससे हम
1: सूचना
0: इनकार
1: जगत
0: नहीं कर
1: है,
0: सकते हैं।
1: वह सूचना जगत है, मैं फिर कह रहा
0: अरे
1: हूं,
0: मैं यह कह रहा हूं, साहित्य ही है आपका, कालजयी साहित्य सारा उपलब्ध है आपके सामने, आप कहां कहां
1: बिल्कुल
0: पुस्तकालयों में भटकते फिरेंगे, यह
1: बिल्कुल।
0: तकनीक ने संभव बनाया है।
1: देखिए
0: नहीं
1: वैसे
0: नहीं
1: नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल बलविंदर जी सहमत हूँ कि हम मोबाइल की एक क्लिक पर हमें सब कुछ मिल जाता है। चलिए आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को बहुत सारा ज्ञान भी दिया, मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी को आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
2: तकनीक के युग में साहित्य के समक्ष चुनौतियाँ, अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर एक परिचर्चा। प्रतिभागी थे डॉक्टर बलविंदर सिंह, डॉक्टर अजय शर्मा एवं डॉक्टर तरसेम गुजराल। इसी के साथ साहित्यिक पत्रिका का ये अंक अब संपन्न होता है। पेशकश सोहन कुमार।

0: जलंधर के अंदर ये न्यूज हेडलाइंस पेश ने मुख्य खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई विखे 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक साल पूरा होया है। उत्तरी रेलवे ने कहा है कि आज सारिया रेलगड्डिया आपो अपनी निर्धारित समा सारणी मुताबिक चलनगिया। देवी दुर्गा की पूजा का 9 दिन का त्यौहार नवरात्रि आज धार्मिक श्रद्धा से उत्साह नाल शुरू होया है। राज्यसभा मैंबर संत बलवीर सिंह सीचेवाल ने नौजवानों विच जल खेडा नूं उत्साहित करन दा सद्दा दित्ता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम तहत चप्पड़चिड़ी तो बाइक रैली नूं रवाना कीता। पंजाब सरकार दिवाली तो पहला ग्रुप डी मुलाजमान 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त त्योहारी एडवांस देगी। मोहाली स्थित महाराजा रणजीत सिंह प्रैपरेटरी इंस्टीट्यूट के 57 कैडेटों वालों NDA 2 लिखती प्रीख्या पास। संस्था वालों 87.7% नाल हुण तक की सब तो वड्डी सफलता की गई दर्ज। सऊदी अरब के रियाद कौमांतरी हवाई अड्डे ते हुए हमले विच 12 लोग मारे गए ते 300 तो वध जख्मी ते भारत ते वैस्ट इंडीज विचकार मर्दां दा तीजा 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच अज इंदौर के होलकर स्टेडियम च खेडिया जाएगा। एसन न्यूज हेडलाइंस यानी मुख खबर। आकाशवाणी का ए जलंधर केंद्र।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार सूबा सरकार जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर के उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: जेड़ी गल असी बोलचाल दी भाषा च नहीं कर सकदे लोक गीतां दा सहारा लेके बखूबी कह दिंदे आ। लोक गीतां दे वख-वख रूप ने जन्म तो लेके अंत समय तक जिन्हां विच

नहीं पड़ा, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान मोहब्बत।

0: किसान 17% तक दी नमी वाले झोने की कीमत तुरंत पा सकन।
1: सुक्का झोना लियाओ, दाने दाने दी कीमत पाओ।
2: आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो तुसी सुन रहे हो हेलो फरमाइश। एक दोस्त आए ने। हेलो
3: हेलो, सत श्री अकाल सर जी।
2: सत श्री अकाल जी।
3: सर जी मैं राजू बोल रहा जी चंडीगढ़ तो।
2: हाँ जी राजू जी, की हाल चाल ने?
3: बहुत वधिया ने सर जी, ठीक ठाक।
2: ते गीत केड़ा सुनना फिर तुसी?
3: दिवाली फिल्म का गीत सुनना सर जी।
2: केड़ा फोन नंबर मिलाया सी तुसी?
3: 74 वाला मिलाया जी, 2813074।
2: बस फिर मैं यही सुनना चाहता सीगा, क्योंकि ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲ ਦਿਓ।
3: 2813074
2: 0181 2813074
3: ਏਰੀਆ ਕੋਡ
2: 0181। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ
3: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: एक दोस्त आए ने। हेलो
1: नमस्कार जी।
0: जी, नमस्कार जी।
1: मैं रणधीर सिंह बांगड़ गांव जिगुड़ी जिला यमुनानगर हरियाणा से जी।
0: जी रणजीत सिंह जी, की हाल चाल ने?
1: चंगा जी, तुसी दसो पंजाबी बोल लें। चंगी लगती है जी पंजाबी।
0: बहुत चंगी लगती है।
1: हाँ जी, मैंने बहुत चंगी लगा जी पंजाबी, पंजाबी से जुड़ गया जी मैं।
0: वैसे मुझे हिंदी भी आती है।
1: हिंदी तो आंदी जी, पर पंजाबी बहुत चंगी लगती जी।
0: ठीक है जी, गीत केड़ा सुनना तुझे?
1: हेलो,
0: गीत कौन सा सुनना है जी?
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: एक क्रांति गल कह दियो जी।
0: कौन सा गीत?
1: आकाशवाणी केंद्र में आया था, बहुत सुखजीत भैन जी से मिला था मैंने, बहुत आनंद आया जी।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत
1: मेरी
0: शुक्रिया।
1: सत श्री अकाल भेज दिया जी उनको।
0: हाँ, सत श्री अकाल मिल गई होनी है तो भेज भी देंगे, कोई गल नहीं।
1: हाँ जरूर भेजना जी।
0: ठीक है,
1: मैं बूटे लग रहे आपके बड़े बड़े आकाशवाणी केंद्र में।
0: ठीक है, तो
1: सही नहीं बोल रहा सर जी मैं?
0: बहुत बहुत वधिया बोल।

0: हेलो फरमाइश प्रोग्राम चल रहा है ते इस वेले फोन लाइन दे उत्ते एक दोस्त आए ने मौजूद ने करदे हां जी गल उहनां दे नाल चलदे उहनां दे वल देखदे हां कि की कहना चाहुंदे ने। हेलो
1: कोशिश करो तुहाडे तो कोई कदे ना रुसे अपणियां दा साथ कदे भी ना छुट्टे
0: जी।
1: कोई भी रिश्ता होवे उसनूं इस तरह निभाओ कि उस रिश्ते दी डोर कदे भी ना टुटे।
0: वाह जी वाह।
1: साडे बहुत ही सत्कारयोग मिठ बोलड़े साडे आरजे गगनदीप सौंधी जी नूं इकबाल सिंह मेन बाजार हठूर तहसील जगराऊं जिला लुधियाना दी बहुत ही प्यार भरी सत्कार भरी मिठी मिठी ते ठंडी ठंडी जी सत श्री अकाल। क्योंकि अज मीह पै रिहा
0: जी
1: तां माड़ा क्योंकि पक्की होई फसल लई ते पर ओहदी रजा जी
0: आपां कर नहीं सकदे।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें अमृत

0: भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बास मुद्रम, परमकुड़ी और नमक्कल शामिल हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने कहा कि उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी पक्षपात के अन्य देशों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। मिशन ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है और ये सशक्त संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया द्वारा संरक्षित है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले ईरान अमेरिका के खिलाफ अपनी गतिविधियां तेज कर सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिका इस संघर्ष को जल्द ही खत्म कर सकता है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनते हाँ प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे अपने मनपसंद पंजाबी गीत। सुनते हैं अज दे प्रोग्राम दा पहला गीत गुरदास मान दी आवाज़ विच।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
3: ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च अगली फरमाइश भेज रहे ने पटेल नगर मलोट तो रमेश कुमार जजोरिया, सुनील, गीता रानी, गगनदीप, आरजू। पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, हार्दिक। राजस्थान तो उर्मिला, गुड्डू, मनु, आदित्य, भूमि, राखी ते शिव सेठी। मुलापुर मंडी तो राजेश जैन, अरुणा, दीपक, गौतम, बिट्टू, नीलम, संजीव, नगीना, स्वीटी ते कृष्ण गोपाल। लुधियाना तो विनोद ते इना दे बहुत सारे साथी फरमाइश कर रहे ने जी कनवर चरेवाल दी आवाज़ विच गीत सुनन दी। आओ सुनते हाँ ये गीत।

पंचकुला तो आशु, अश्वनी, गोविंद, टोनी, लव, राधे, भाविक, अबोहर तो मोहिंदर, वेद प्रकाश, अमित, अजय, ज्ञानी, अमलेश्वर तो डुमान, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजाला, ज्योति, तिर्यांश, नागपुर तो अभिजीत, सरिता, प्रिंस, शैले

वैशाली श्वेता ध्वनि, पिंडो केरिया तो कश्मीर सिंह, सुखजीत सिंह, करतार सिंह, अनमोल, सहजप्रीत, रहमत, खुशप्रीत, सोहनलाल, आशा रानी, हरचरण, नथा सिंह, सादुल शहर तो ओम प्रकाश, मनु, शिव प्रकाश ते वेद प्रकाश। फरमाइश कर रहे ने जी बिलाल सईद की आवाज़ में गीत सुनने की, आओ इन्हों सारे की रली मिली फरमाइश से सुन दिया गीत।

हरियाणा तो जेके बकौलिया, सुनीता, संजय, अनिल ते मनु। नागपुर तो वैशाली, शैलेश, श्वेता, सुमित ते ध्वनि। महाराष्ट्र तो अभिजीत, सरिता, प्रिंस, एकांश। भागापुराना तो सतनाम, अमरजीत, फतेह, सुखदेव, जसगुन, सुखदेव ते गुरलीन। आदर्श नगर मलोट तो राज, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव ते शाइना। बठिंडा तो हरजिंदर, जसवीर, गगन, रेखा, सोनी, सीता ते गीता। संगरूर तो अश्वनी, विनोद, पूजा, प्रियंका। दिल्ली

तो गुरमीत सिंह मीता, बंगा तो जगतार राजा राजविंदर कुलविंदर अमरजीत अंबा ते परमिंदर। फरमाइश कर रहे ने जी डैनी की आवाज़ में गीत सुनने की, आओ सुनते हैं गीत।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रेल परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए चेन्नई पहुंच चुके हैं। श्री मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार चेन्नई मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी चेन्नई मेट्रो में पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक की यात्रा भी करेंगे। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बासमुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी जलकिंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे।

0: दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो को भ्रामक बताया है जिसमें एक कथित उपनिरीक्षक ने दिल्ली के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पद से इस्तीफा देने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिखाया गया उपनिरीक्षक दिल्ली पुलिस में नहीं है। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने कहा कि मानवाधिकार कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी पक्षपात के अन्य देशों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई है। गुजरात में गांधीनगर निगम थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 12:05 हो रहे ने। हुण पेश है प्रोग्राम बाल जगत।

0: जय हिंद।
1: कदे उदासी आवे मन ते बच्चे कर दे दूर, गोदी दे विच आके बैठन सब गम चकना चूर। इना प्यारे प्यारे होनहार बच्चियां दा मनपसंद प्रोग्राम बाल जगत लैके तुहाडे रेडियो सैट पर हाजिर हो चुके ने सुखदीप और गुरप्रीत। ऐतवार दी इस खूबसूरत जी दोपहर नू होर ज़्यादा खूबसूरत करन दी कोशिश करांगे, मनोरंजन जानकारी और प्यारे बच्चियां दियां खूबसूरत वालियां हाजरियां दे नाल।
0: जी, बाल जगत प्रोग्राम दे विच सारयां दा बहुत बहुत स्वागत जड़ा है, बहुत वधिया तरीके दे नाल सुखदीप भैया ने कर दित्ता और तुहानू सारयां नू दस भी दित्ता है कि किस तरीके दे नाल वख-वख सुमेल जड़े ने असीं तुहाडे सारयां दे सामने लैके आउने आ। लेकिन खास करके बच्चों, जदों असीं बचपन दी गल करदे आ ते बचपन नू किताब है जिस दे हर पन्ने ते इक नवी कहानी लिखी हुई हुंदी है और इह कहानियां जदों तुसीं लिखदे जांदे हो और पिछे वल नू

0: ने तैयारी की हुई है। सो सच्ची बहुत ज्यादा चंगा लग रहा है। बच्चे जेडे ने खास करके बहुत ही वधिया तरीके दे नाल अपनी परफॉर्मेंसेस जेडियां ने लेके आए हुए ने और असीं सारे बहुत प्यार नाल सुनदे आ। आस उम्मीद करदे आ कि तुसीं ही बहुत वधिया तरीके दे नाल इस नूं सब नूं जेड़ा है सुन रहे होंगे और अपनी तैयारी जेड़ी है नाल दी नाल कस रहे होंगे कि अगलियां परफॉर्मेंसेस और खास करके अगले प्रोग्राम्स दे विच तुहाडी वारी जेड़ी है जरूर ते जरूर उसका इंतजार सानू भी ते सारियां नूं रहेगा। हुण सुखदीप ने कहा सी कि दसो केड़ी परफॉर्मेंस जेड़ी है ओह बच्चे लैके आ रहे ने। सो अगली परफॉर्मेंस दी जदों असीं गल कर देश भगती दे नाल भरिया होया गीत आओ सारे रल मिल के सुनदे आ।
1: अज असी पातशिका स्कूल दे बच्चे तुहानू देश भगती गीत सुनान जा रहे हां।

0: हाँ, खास करके रात नू देर तक फोन नहीं चलाना चाहिदा।
1: ठीक है कशिश, आज तो मैं भी तेरे वांग सिर्फ स्कूल दा काम करन जा जरूरी काम लई ही फोन इस्तेमाल करांगी। मैं भी तेरे नाल बाहर खेडन जाया करांगी, वीडियोस दा समा कट करांगी अते पहला अपना कर अते स्कूल दा काम करांगी।
0: शाबाश मेरी चंगी सहेली, तू ता समझदार हो गई है। मोबाइल साडे लई चंगा साधन है, बस इस दी वरतों समझदारी नाल करनी चाहिदी है।
1: बिल्कुल, चल हुन फोन छड़िए ते बाहर खेडन चलिए।
0: हाँ चल चलिए, धन्यवाद।
2: लो जी, धन्यवाद पार्थ सीकर स्कूल ब्यास दे बच्चियां दा, उना दे टीचर सहबान दा, प्रिंसिपल सहबान दा, जिन्हां ने अज बाल जगत दे विड़े दे विच आके खूब सारियां रौनकां लगाईयां। और ए रौनकां बच्चियो अगले हफ्ते भी जरूर लगनगियां, क्योंकि बच्चे इन्नी तैयारी दे नाल आए सी, इन्ने चा दे नाल, इन्ने उत्साह दे नाल कि उह खूब सारियां सानू रिकॉर्डिंग करके दे गए ने। और गुरप्रीत, कई वारी हुंदा ना कि सानू बच्चियां नू कहना पैंदा आ थोड़ा जिहा होर रिकॉर्ड कर दिओ, आ वी कर दिओ, उह वी कर दिओ, ते उह कई वारी आना कानी करदे ने कि नहीं सानू मुश्किल लगेगा। पर इह जिहड़े बच्चे आए ने बड़े मोटीवेट होके आए ने और सानू खूब सारियां अज परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करवा के जा रहे ने
3: जी। और प्रोग्राम बाल जगत चल रहा जी, प्रोग्राम बाल जगत दे विच हुणे बच्चियां दा सिलसिला जिहड़ा है, खास करके नन्ही कलम तो दे जरिए कह लो या फिर स्कूल दी परफॉर्मेंस दी जदों असीं गल करदे आ, उह हुण असीं इत्थे ही खत्म करदे आ ते अगले सिलसिले दे वल रुख करदे आ, जिहड़ा है जी नॉलेज टाइम। और नॉलेज टाइम दे जरिए खास करके तुहाडे सारयां दे लई बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करके लैके आउंदे आ, जिस दा मतलब सिर्फ इही है कि तुसीं आप अपने तक कोई जानकारी ना रखो, आप ते उस दे उपर काम करो ही करो, दूसरियां नूं भी सुचेत जरूर ते जरूर करो, क्योंकि बहुत ही खास दिन जड़ा है वह अज असी मना रहे हाँ 11 अक्टूबर नूं, एज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। और जदों असी समानता की गल करते हैं, जदों असी इक्वैलिटी की गल करते हैं, तो इत्थे हुण 21वीं सदी दे विच गुहार सानूं नहीं लगाउणी चाहीदी कि सबनों इको तरीके नाल देखना चाहिए है, क्योंकि असी उस युग दे विच जी रहे हैं जिथे सारे ही अपनी जिंदगी नूं बहुत ही सोहने तरीके नाल बचो बसर कर रहे हैं। तुसी क्लास दे विच जदों जांदे हो तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों इकट्ठे ही बैठते हैं और पढ़ते हैं, और घर के भी यह सुमेल जड़ा है वह बनिया होया है। सो तुहानू सीखने की लोड़ है कि इज्जत जड़े ने वह बॉयज़ ने गर्ल्स की करनी, और गर्ल्स ने बॉयज़ की करनी, और बनते हक जड़े ने तुहाडे सारयां दे अपने अपने बहुत सोहने होने चाहिए। लेकिन दिन जड़ा है वह असं मना रहे हैं जी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो एक प्यारा जहा गिफ्ट सारिया ही भैणों लिए बच्चियों लिए जरूर तो जरूर घर तो होना चाहिए अज के दिन।
2: गल करिए 13 अक्टूबर की, तो 13 अक्टूबर का दिन बचो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के तौर पर मनाया जाता है। और मुसीबत कहते हैं कि कदे भी दस के नहीं आउंदियां, अचानक कुछ भी कुदरत दे वरतारे दे विच हो सकता है, किते भूचाल आ सकता है, किते सुनामी आ सकती है, किते बहुत सारा पानी लैंडस्लाइड हो सकती है, या कोई भी मुश्किल की घड़ी घट सकती है। तो इन्हां दिनां नूं मनाउण दे पिछे मनोरथ यही रहिंदा कि इन्हां मुश्किल दीयां घड़ियां दे विच डरन दे नालों चंगा है कि समझ रखिए कि हुण असीं की करना है, किस तरह असीं अपनी ते दूसरियां दी जान नूं बचा सकते हैं। सो इन्हां दिनां नूं मनाउण दे पिछे यही मनोरथ रहिंदा है कि साडे विच वध तों वध जानकारी भरी होवे और असीं इन्हां मुश्किल दीयां घड़ियां दे विच अपना की रोल अदा करना है
3: जी। और जदों असीं अगले दिन की गल करते हैं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, जदों असीं विश्व म्यार दिवस की गल करते हैं, तो ये खास दिन है जिस दे विच सानूं ये सिखाया जाता है कि किसी भी चीज़ नूं बनाउण या करन दे लई कुछ निर्धारित नियम जिहड़े ने उह हुंदे ने, ते उहनां दी गुणवत्ता जिहड़ी है उसनूं असीं चैक करना हुंदा, उसदे पद्धर तय करने हुंदे ने, और ये म्यार है जिहड़ी खास करके असीं सैट करनी हुंदी है। छोटी जी गल करदे आं बच्चों, जिवें खिडौणियां की गल कर लईए, खिडौना जिहड़ा है वह किन्नी उम्र तक किस तरीके नाल वह सुरक्षित है बच्चों के लिए, यह जरूर तो जरूर उसके उपर लिखा हुआ होंदा है। बिजली के उपकरण हमेशा थोड़े पेरेंट्स भी थोड़ा गाइडलाइनस देंदे रहेंगे ने कि किस तरीके नाल इस्तेमाल करना है। सो एक स्टैंडर्ड्स असी अपनी जिंदगी दे विच सैट करते हाँ, और वह किए हुए स्टैंडर्ड्स तो बाहर जो असी चले जाने तो कई बार सानू मुश्किलों का सामना करना पै सकता है, इस करके ही खास दिन मनाया जाता है। सो तुसी अपने घर दे विच कुछ नियम जिहड़े ने उह जरूर ते जरूर सैट कर सकदे हो इस खास दिन नूं मनाउंदिआं।
2: सो ये स्टैंडर्ड्स की ने प्यारे बच्चे, बहुत सारिया इलैक्ट्रिकल जिहड़ियां चीज़ां ने उहनां दे उत्ते ISI मार्क लिखिया हुंदा है, ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਟੈਂਪਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ

0: ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 17% ਤੱਕ ਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਰੰਤ ਪਾ ਸਕਣ।
1: ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆਓ, ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਓ।
2: ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ EMI ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ।
3: ਕਿਵੇਂ?
2: ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ।
3: ਓਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ?
2: ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ? ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸੌਖਾ, ਇਹ ਮਨੀ ਮਿਊਲ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3: ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਨਾ।
0: ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਾ ਦਿਓ। RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
4: ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ ਤੇ ਸਚੇਤ ਰਹੋ।
5: ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, बासमुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी IIT मद्रास में जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वे परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली तेल शोधन संयंत्र में ल्यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना का शिलान्यास करेंगे। वे कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी रेलगाड़ी

0: गाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को ये सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने 1 वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रूपए की जमानत पर रिहा किया गया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी 1-1 नागरिक की जान गई है। गुजरात में गांधीनगर नगर निगम, थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। गांधीनगर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय 130 उम्मीदवार 11 वार्ड की 44 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम पेश किया जाएगा। अज इस प्रोग्राम विच काम दियां गल्लां ते मंडियां दे भाव तो इलावा डॉक्टर अमित तो हाड़ी फसलां दी काश्त बारे जानकारी लवोगे।

0: देवी दुर्गा दे नौ अवतारा नु समर्पित नरात्या दा नौ दिना दा त्योहार पंजाब समेत देश भर दे मंदिरा विच सवेर दी आरती नाल शुरू होया, जिथे वड्डी गिणती विच श्रद्धालु आशीर्वाद लैण लई इकट्ठे होए। सूबे दे वख वख मंदिरा जिवें कि अमृतसर दे श्री दुर्गाणा मंदिर, पटियाला दे माता काली देवी मंदिर अते जलंधर दे श्री देवी तलाब मंदिर समेत सूबे दे होर सारे मंदिरा विच श्रद्धालु देवी दुर्गा दे दर्शना लई पहुंच रहे ने। मंदिरा विच हवन यज्ञ अते धार्मिक प्रोग्राम जारी ने। ए त्योहार दशहरे दे नाल संपूर्ण होएगा। देश भर दे श्रद्धालु इन्हां नौ शुभ दिनां नूं बड़े उत्साह अते श्रद्धा नाल मनाउंदे ने। सरबजीत कौर, आकाशवाणी खबरां, जलंधर।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके लोकां नूं शुभकामनावां दित्तियां ने। उधर अमृतसर विच दुर्गियाणा तीर्थ विखे स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री वड्डे हनुमान मंदिर च लंगूर मेले की शुरुआत भी हो गई है। इस मेले दौरान नवजन्मे बच्चों तो लैके नौजवानों तक

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: हेलो,
5: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
6: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
7: लाओ जी, आज तो हमने दसांगा वायरल ना होने के तरीके।
1: ओ लोकी ता वायरल होने के तरीके दस दे आ, ते तू वायरल ना होन दा।
7: सोशल मीडिया ते वायरल होन नालों भी वद जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि एचआईवी एड्स किवें नहीं फैलदा। एचआईवी एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नू छोण जा हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणा या भांड्यां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जा मच्छर दे कट्टण नाल।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
8: आ हुण सुनदे आ जी अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत, ए आर रहमान दी आवाज़ विच।

0: हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी ले डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वालों जनहित विच जारी।
1: लाओ जी, आज तुहानू दसांगा वायरल ना होण दे तरीके।
2: ओ लोकी ता वायरल होण दे तरीके दसदे आ, ते तू वायरल ना होण दा?
1: सोशल मीडिया ते वायरल होण नालों वी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। उस दे लई जरूरी है ए जानना कि HIV एड्स किवें नहीं फैलदा। HIV एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
0: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
3: ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਸੁਣਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: लाओ जी, आज तो हमने दसांगा वायरल ना होने दे तरीके।
1: ओ लोकी ता वायरल होने दे तरीके दस दे आ, ते तू वायरल ना होंदा।
3: सोशल मीडिया ते वायरल होने नालों भी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि एचआईवी एड्स किवें नहीं फैलदा। एचआईवी एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: आओ जी हुण सुनदे आं अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत, उदित नारायण ते श्रेया घोषाल दी आवाज़ विच।

कत्तर एंटोनियो गुटरेस सते कई देशां ने साउदी अरब के किंग खालिद अंतरराष्ट्री हवाई अड्डे ते हुए हमलों की सख्त निंदा की है। इन्हां हमलों च 12 लोग मारे गए ने अते 309 जख्मी हुए ने। मृतकों विच साउदी दे 4 नागरिकों तो अलावा बंगलादेश, अमरीका, मिसर, जॉर्डन, सीरिया, फलस्तीन अते सुडान के नागरिक शामिल ने। श्री गुटरेस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि आम नागरिकों अते नागरिक बुनियादी ढांचों उत्ते हमले अंतरराष्ट्रीय कानून की उलंघना ने अते इन्हां नूं तुरंत रोकिया जाना चाहिए है। फलस्तीन, मिसर अते कतर ने साउदी अरब एकजुटता प्रगटाई है। काकरोच जनता पार्टी के आगुआ अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका अते सौरभ दास नूं रिहा कर दिता गया है। इन्हां तिन्हां नूं कल एहतियात वजों हिरासत च लिया गया सी। नवीं दिल्ली विच विशेष कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की अदालत ने अज उन्हां दी रिहाई दे निर्देश दित्ते। दिल्ली पुलिस मुताबक इन्हां तिन्हां ने एक साल तक शांति अते चंगा विहार बनाई रखण दा भरोसा दिवाया है अते उन्हां नूं 50,000 रुपए दे जमानती बांड उत्ते रिहा कीता गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अज अधिकारियों नूं हदायत की कि वह यह यकीनी बनाउण कि शांतिपूर्वक इकट्ठे होण वाले लोगों नूं गैर कानूनी ढंग नाल हिरासत विच ना लिया जावे अते आवाजाई नियमों की पालना करन वाले लोगों नूं परेशानी का सामना ना करना पवे। अदालत ने दिल्ली विच बैरीकेडिंग के प्रबंधां की समीख्या करन लई भी कहा अते केंद्र नूं हदायत की कि वह यह यकीनी बनावे कि मैट्रो सेवावां अपने आम समा सारणी अनुसार चलण अते कानून व्यवस्था दीआं जरूरतां नूं ध्यान च रखदिआं इंटरनेट सेवावां बिना किसी रुकावट जारी रहन। उत्तरी रेलवे ने ऐलान किया है कि अज सारियां रेल गड्डियां आपो अपनी निर्धारित समा सारणी मुताबक चलनगियां। दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन DMRC ने ऐलान किया है कि सुरक्षा कारण करके बंद किए गए सारे 45 मैट्रो स्टेशनों में दाखिल होने ते बाहर निकलने वाले दरवाजे हुण दोबारा खोल दिए गए ने। DMRC ने यह भी कहा कि सारे संबंधित मैट्रो स्टेशनों उत्ते इंटरचेंज सहूलत बहाल कर दी गई ने। दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो नूं गुमराहकुन दस्या है जिस विच कथित सब इंस्पैक्टर दिल्ली चल रहे विरोध प्रदर्शन शामिल होने लई अपने अहुदे तो अस्तीफा देने की गल कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया से वायरल हो रही वीडियो दिखाई देने वाला सब इंस्पैक्टर दिल्ली पुलिस का नहीं है। पुलिस ने कहा कि झूठी समगरी तैयार करने या प्रसारण करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਏ @AIR RNU ਜਲੰਧਰ, ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਏ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਏ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਾਨਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 100 ਆਸਵੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 11 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 36 ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। देवी दुर्गा की पूजा का 9 दिन का त्यौहार नवरात्रि अज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह नाल शुरू हो गया है। इस त्यौहार दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अज नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जा रही है। देवी शैलपुत्री ताकत, स्थिरता और नवी शुरुआत का प्रतीक ने। देवी दुर्गा के 9 अवतारों को समर्पित 9 दिनों का यह त्यौहार पंजाब समेत देश भर के मंदिरों में सवेर की आरती नाल शुरू होया जिथे वड्डी गिणती में श्रद्धालु आशीर्वाद लैण लई इकट्ठे होए। उप राष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने नवरात्रि के मौके पर देशवासियों नूं शुभकामनावां दित्तियां ने। सोशल मीडिया उत्ते एक पोस्ट राही उन्हां कामना की कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद सारियां नूं शक्ति, हौसला और सदबुद्धि प्रदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नरात्रियां की शुरुआत मौके देशवासियों नूं शुभकामनावां दित्तियां ने। सोशल मीडिया उत्ते पाई पोस्ट विच श्री मोदी ने माँ शैलपुत्री अगे प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने तमिल भगती गीत करपुर नाइगीए का वीडियो भी सांझा किया। श्री मोदी ने आस प्रगटाई कि देवी माँ का आशीर्वाद देशवासियों विच धीरत और स्वै विश्वास की भावना पैदा करन लई प्रेरणा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज महाराजा अगर सेन की जयंती मौके उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया से एक पोस्ट विच कहा कि महाराजा अगर सेन लोक सेवा और समाजिक सद्भावना के मोढ़ी सन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आजादी घुलाटीए लोक नायक जय प्रकाश नारायण की जयंती मौके उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट की है। नेपाल विच हड़ां दे मद्देनज़र बिहार के सरहदी जिले पछमी चंपारण में चौकसी वधा दी गई है। हालांकि बिहार उत्ते इस वाधे का असर नामात्र रहने की उम्मीद है। जिला मैजिस्ट्रेट तरनजोत सिंह ने कहा कि जिले में गंडक नदी के पानी के पद्धर में कोई

0: जिसमें कई लोग हलाक और जख्मी हुए और इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। एक बयान में वजारत खारजा ने मरने वालों के कुंबों से ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। भारत ने कहा है कि आम शहरियों और सिविलियन बुनियादी ढांचे पर बार बार हमले पूरी तरह नाकाबिले कबूल हैं और ये सिलसिला बिला ताखीर रोका जाना चाहिए। भारत ने कहा है कि वो सऊदी अरब के अवाम और वहां की सरकार के इख्तदार आला के दिफा में उनके साथ यगानगत का इजहार करता है और उम्मीद करता है कि खित्ते में अमन और मामूल के हालात जल्द बहाल होंगे। नई दिल्ली में सीजेपी के अभिजीत दीप के, आशुतोष रांका और सौरभ दास को खसूसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज रिहा कर दिया। इन तीनों को कल एहतियाती इकदाम के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कानूनी तरीकेकार पर अमल करते हुए इन तीनों को आज सुबह दिल्ली कैंट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सीजेपी के बानी अभिजीत दीपके की दादी के इंतकाल के बारे में इत्तला कल बिला ताखीर उन तक पहुंचा दी गई थी। पुलिस ने कहा है कि उन्हें आखिरी रसूम के वक्त के बारे में भी जानकारी दी गई और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें उनके आबाई कस्बे जाने में सहूलत के लिए हर मुमकिन इमदाद की पेशकश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर फिर से सर्कुलेट होने वाले एक गुमराहकुन वीडियो को खारिज कर दिया है, जिसमें एक शख्स ये झूठा दावा करते हुए दिखाया गया है कि वो दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर था और उसने एहतजाज में शामिल होने के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एक बयान में दिल्ली पुलिस ने यह वजाहत की है कि महकमे की रिकॉर्ड से तस्दीक के बाद मालूम हुआ है कि मस्कूरा दावे में जिस सब इंस्पेक्टर के होने का तस्करा किया गया है, हकीकत में ऐसा कोई अहलकार नहीं है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पुरअमन तरीके से इकट्ठा होने वाले लोगों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में न लिया जाए और ये कि ट्रैफिक जाब्तों को मलहूज़े खातिर रखते हुए लोगों की आजादाना नकलो हरकत की इजाजत हो। अदालत आलिया ने दिल्ली में बैरिकेडिंग के इंतजाम पर नजरसानी के लिए कहा है और मरकज को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मेट्रो खिदमात मामूल के निजाम अवकात के मुताबिक काम करें और इंटरनेट खिदमात में कोई रुकावट न पड़े, लेकिन इसका इन्हिसार अमन कानून की सूरत हाल के तकाजे पर होगा। अदालत आलिया ने हिदायत दी है कि वो वकीलों को उनके पेशावराना फ्राइज की अंजामदही से न रोका जाए। एक अपील पर मरकज को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सभी फरीकों के दलाइल की समाअत करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि किसी तरह की परेशानी पैदा न हो। मस्कूरा अपील में सुप्रीम कोर्ट से अपनी हिदायत की मुबैना खिलाफ वर्जी के मामले पर हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त की गई है। नेपाल में गोरखा जिले में आज सुबह बूढ़ी गंडकी दरिया में पानी की सतह में अचानक हुए इजाफे के सबब कई मकानात बह गए, जिसके बाद हुक्काम ने लोगों से आसपास के इलाके छोड़कर महफूज इलाकों में मुंतकिल होने के लिए कहा है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जगत के मुकाम पर 5 से 7 मकानात बह गए, जबकि कई दिगर मकानात के भी पानी में बह जाने का अंदेशा है। अब तक किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। नेपाल में सैलाब के बाद बिहार के सरहदी जिले मगरबी चंपारण में चौकसी बरती जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट तरनजोत सिंह ने बताया कि जिले के गंडक दरिया में पानी की सतह में इजाफे की तवक्को नहीं है, ताहम एहतियाती इकदाम के तौर पर नशीबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
1: लोगों ने अलर्ट किया है, लेकिन पानी कोई बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देवघाट पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक देवघाट से भी पीछे काली खोला करके जगह है, वहां पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 सेंटीमीटर बढ़ के अब फॉल करना शुरू कर गया है।
0: जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक नेपाल के कालीकोला में पानी की सतह में सिर्फ 50 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल के कालीकोला में पानी की सतह में कमी आनी शुरू हो गई है। देवी दुर्गा की आराधना का 9 रोजा फेस्टिवल नवरात्रि आज मजहबी जोशो जज्बे के साथ शुरू हो गया है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 मुख्तलिफ अवतार में पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन देवी दुर्गा की मां शैलपुत्री के तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने

0: नवरात्रि के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज महाराजा अग्रसेन को उनके यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि महाराजा अग्रसेन समाजी खिदमत, समाजी हमाहंगी के अलमबरदार थे, जिनकी जिंदगी और नजरियात समाज को इंसानियत का पैगाम देते रहेंगे। गुजरात में थारा और ओखा म्यूनिसपैलिटियों के साथ साथ गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत बलदियाती इदारों के इंतखाबात के लिए पोलिंग पुरअमन तौर पर जारी है। वोटिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। म्यूनिसिपल चुनाव के साथ साथ खेरालू, छोटा उदयपुर और बायड म्यूनिसपैलिटियों की खाली सीटों के लिए जिमनी चुनाव भी हो रहा है। इसके अलावा देवभूमि, द्वारका जिला पंचायत और पडाधरी तालुका पंचायत की सीटों के लिए भी जिमनी चुनाव में वोट डाले जा रहे हैं। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा T20 मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले में पूनमल्ली वडापलानी रेल पट्टी का इफ्तिताह किया। वजीर आजम आज ही चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने वाले हैं। भारत ने सऊदी अरब में रियाज के हवाई अड्डे पर बार बार हमले होने की मजम्मत की है और जानोमाल के नुकसान पर तश्वीश का इजहार किया है। दिल्ली में खसूसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत ने CJP के अभिजीत दीप के, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्काम को हिदायत दी है कि पुरअमन तरीके से इकट्ठा होने वाले लोगों की गैर कानूनी हिरासत की रोकथाम की जाए और लोगों की आजादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाया जाए। नेपाल के गोरखा जिले में कई मकानों के पानी में बह जाने के बाद बूढ़ी गंडकी दरिया के इलाके में लोगों को मुंतकिल किए जाने के ताल्लुक से वार्निंग जारी की गई है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: खबरों तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरा ने सुन दे। आज दे प्रोग्राम दा अगला गीत सुनिधि चौहान ते हंसराज हंस दी आवाज़ में।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोतियां दी जानकारी लिए सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
3: की कहा तुहाडी लॉटरी निकली है? टिकट खरीदी सी? नहीं, अच्छा तुहानू फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया ते हुण आधार नंबर पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
4: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
4: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
7: ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम फौजी वीरां लई। सुनते अज्ज दे प्रोग्राम दा अगला गीत
8: उदित नारायण दी आवाज़ विच।

इस गीत दे नाल ही फौजी वीरो अज दा प्रोग्राम इत्थे ही समाप्त हुंदा है। मैनू दिओ इजाजत। फौजी वीरो जय हिंद।

0: ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नेपाल ने गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी बढ़ने से कई घरों के बह जाने को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों, अन्ना द्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रोड शो किया और परूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो की यात्रा की। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बास समुद्रम, परमाकुडी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल है। इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समुद्री अवसंरचना को मजबूत करना, माल ढुलाई क्षमता का विस्तार करना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स परियोजना की शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे जयगोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी

0: निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्व के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही करने वाली याचिका पर न्यायालय ने कहा कि वो सभी पक्षों की बात सुनेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा न हो। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अनवरत अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन को केंद्र में रखकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का ये प्रयास लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में चर्चा पद्म पुरस्कारों की, जिसकी चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए व्यापक बदलाव किए गए।
2: 2014 के बाद पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया गया। देश के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया गया है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नामांकित करने के अवसर हैं। सभी नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इन व्यापक सुधारों ने पद्म पुरस्कार को एक सीमित दायरे से निकालकर जन पुरस्कार के रूप में बदल दिया और दूर दराज, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने का नया मानक स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में पद्म पुरस्कारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ये पीपुल्स पद्म बन चुका है।
3: पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका, अब ये पीपल्स पद्मा बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता।
2: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
4: भारत सरकार ने निसंदेह 12 वर्षों से ये प्रयास किया है कि भारत की मिट्टी के जो सच्चे सेवक है उनको सम्मान मिले और उनके बारे में बताना, मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है।
2: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और वर्ष 2026 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित मंगला कपूर ने भी पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि अब एक आम आदमी के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि वह किसी भी क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है तो उसे भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि

0: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की ही तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की है कि क्षेत्र में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। सऊदी अरब ने एक बयान में बताया कि हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हैं। मृतकों में 4 सऊदी नागरिक और 8 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मृतकों में बांग्लादेश के 2 और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन तथा सूडान का 1-1 नागरिक है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हवाई हमला हुआ। एक रिपोर्ट।
1: शनिवार को रियाद एयरपोर्ट पर हूतियों का हमला इस हफ्ते का तीसरा हमला था। यह पिछले करीब 10 साल में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अलर्ट सिस्टम से कोई खतरे का अलर्ट जारी नहीं हुआ था। शनिवार को रियाद आने जाने वाली करीब 260 फ्लाइट्स रद्द होने की खबर है। इस हफ्ते हुए पहले के हमलों में भी लोगों की जान गई थी और एयरपोर्ट पर खड़े सऊदी अरब के एक कमर्शियल विमान को नुकसान पहुंचा था। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दम्माम एयरपोर्ट और अल खर्ज को भी निशाना बनाने की कोशिशों की जानकारी दी है। गठबंधन ने सऊदी क्षेत्र पर हुए इन हमलों का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: अमेरिका यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के इच्छुक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति स्थापित करने के अवसरों को बार बार गंवाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिले पश्चिम चंपारण में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि बिहार पर इस बाढ़ का असर होने की संभावना बहुत कम है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह ने कहा कि जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका नहीं है।
2: लोगों ने अलर्ट किया है, लेकिन पानी कोई बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देवघाट पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक देवघाट से भी पीछे काली खोला करके जगह है, वहां पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 सेंटीमीटर बढ़ के अब फॉल करना शुरू कर गया है।
0: गुजरात में गांधीनगर, ओखा और थारा नगर निगम चुनाव तथा खिरालू, छोटा उदयपुर और बायद नगर निगम उपचुनाव, देवभूमि, द्वारका जिला पंचायत, पड़धारी, सतलासना और हरिज तालुका पंचायत के उपचुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। गांधीनगर नगर निगम के 11 वार्ड में अब तक औसतन 31.9% मतदान दर्ज किया गया है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता में ईडन गार्डन्स में महालया के अवसर पर आयोजित भव्य उमा आगमोनी कार्यक्रम के साथ देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत किया।
3: कोलकाता में देवी पक्ष की शुरुआत के साथ ही दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में उमा आगमन कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की औपचारिक शुरुआत की। 3000 ढाकियों ने एक साथ पारंपरिक ढोल बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ड्रोन शो में आसमान पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की छवि दिखाई गई। उत्सव की रौनक रोड पर भी देखने को मिली, जहां विभिन्न पंडालों में पश्चिम

0: सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद सभी को शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देवी मां का आशीर्वाद देशवासियों में धैर्य और आत्मविश्वास की भावना को प्रेरित करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 2:03 हो रहे ने। हुण पेश है जी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच आओ सुनदे हां गिरधारी लाल ते साथियां दी आवाज़ विच माता दियां भेटां।

प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां सुन रहे सारे ही स्रोतियां दा तहे दिल तों निक्का स्वागत करदे हां। दोस्तो, इस प्रोग्राम दे विच असीं तुहानूं सुणाउंदे हां तुहाडे मनपसंद पंजाबी फरमाइशी गीत ते नाल ही तुहाडे वल्लों लिखीआं चिट्ठियां दे विच जिहड़ियां तुसीं अपनीआं फरमाइशां दे नाल अपने नाम भेजे हुंदे ने उह वी असीं इस प्रोग्राम दे विच शामिल करदे हां। लओ जी, तुहाडी फरमाइश ते सुणाउण जा रहे हां प्रोग्राम दा पहला गीत ते नाल दी नाल गीत वी सुणावांगे ते तुहाडे नाम वी तुहाडीआं फरमाइशां सहित प्रोग्राम दे विच पेश करांगे।

सेक्टर स्टार्ट मोहाली चंडीगढ़ तो ने टीडी मल्होत्रा रितिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर ते डॉक्टर अमनदीप कालका तो ने शुभ चंद्र बजाज साहिल ते बिट्टा बजाज श्रीनगर माफ करना श्री गंगानगर तो ने बजरंग लाल शर्मा जगमोहन सिंह अग्नेचा दिनेश कुमार शर्मा ते नरेश कुमार शर्मा पिंड आजमबाला तहसील फाजिलका तो ने सोहन सिंह बोक निशान सिंह बोक सीरत कौर कीरत कौर अते दादी जसवंत कौर पिंड कैरों जिला तरन तारण पंजाब तो ने गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुमीत सुनीता शम्मी रजनी आकाशदीप अनहद ते उनदा पोत्रा गुरशबद आओ दोस्तों इन्हां सारे दी मिली जुली फरमाइश दे ते सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत बब्बू मान दी आवाज दे विच

मुल्लापुर दख मंडितों ने राजेश अरुणा दीपक गौतम नगीना अरिहंत सुरभि सीमा सारिका संजीव मनोज ते समता जैन मलोट तो ने जगतार गिल परमजीत कौर गिल गैवी गिल ते अमन गिल शाजली तो ने सुखबीर सिंह बुर्ज सिद्धवा मलोट तो ने सर्वजोत सिद्धू अविताज सिद्धू तोला किंगरा तो ने जगतार जग्गा टालीवाला जट्टा तो ने साहिब सिंह सुखजीत कौर बलविंदर हरजिंदर गिद्दड़बाहा तो ने मनजीत ते प्रवीण आओ दोस्तों इन्होंने सारे की मिली जुली फरमाइश देते सुनते हाँ प्रोग्राम।

महस गेट नाभा तो ने सौरभ सोमदत्त कैरव ज्योति राणी ते गुरमन्नत महला फतेहगढ़ साहिब लुधियाना पंजाब तो ने विनोद अशोक सुशील कैलाश अनीता ममता मेघा पूजा गगन गुंजन लालसा रामा कुनाल निधि हरीश सतीश राकेश विनोद पाली ते अरुणापुरी पिंड कुड़ियाना जिला फाजिलका तो ने त्रिलोक सिंह सुखना शिवजोत सिंह ते उन्हां दा सारा परिवार पवनाल हाजीपुर तो ने विजय कौंडल पूजा कौंडल ते अलीसा कौंडल करणवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पुचो कैंचियां तो ने प्रेम सिंह जौड़ा मनजीत कौर जौड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर सिमरन कुलदीप एकम दमन ते अभिजोत पिंड समालसर जिला मोगा तो ने लक्ष्मण सिंह कारू लवप्रीत सिंह विक्की वीरू ते काली आओ दोस्तों इन्हां सारे दी मिली जुली फरमाइश ते सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत ते इसे गीत दे नाल प्रोग्राम नूं इत्थे ही इस गीत तो बाद समाप्त करांगे ते इस गीत तो बाद तुसी साडा अगला प्रसारण ठीक 4 बजे सुनोगे साडे प्रदेशिक चैनल तों।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। शाम दे 4 बज रहे ने, साड़ी दूसरी सभा हुण शुरू हुंदी है। सभा दे शुरू विच आओ सुनदे हाँ हुण तक दे मुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज चेन्नई विच 13,000 करोड़ रुपए के वख-वख प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। भारत ने साउदी अरब की राजधानी रियाद ते अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते हुए हमलों की सख्त निंदा की है। काकरोच जनता पार्टी के आगुआ अभिजीत दीपके, आशुतोष रनका अते सौरभ दास नूं रिहा कर दिता गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्वक इकट्ठे होने वाले लोगों नूं गैर कानूनी ढंग नाल हिरासत विच लैण अते आवाजाई नूं निर्विघन जारी रखण दे निर्देश जारी किए ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीते दिनी संगरूर दे पिंड बलरां विच विकास कार्ज लई ग्रांट चैक सौंपे। मोहाली स्थित महाराजा रणजीत सिंह प्रैपरेटरी इंस्टीट्यूट दे 57 कैडेटां वल्लों NDA 2 लिखती प्रीख्या पास संस्था वल्लों 87.7% नाल हुण तक की सब तो वड्डी सफलता दर्ज की है। देवी दुर्गा की पूजा का 9 दिन का त्यौहार नवरात्रि अज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह नाल शुरू होया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का अज 1 साल पूरा हो गया है। पंजाब के कई हिस्सों में अज हुई बारिश नाल मौसम विच तब्दीली आई है। भारत और वैसट इंडीज़ विचकार तीजा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच विच इंदौर विच शामी 7 बजे खेडिया जाएगा। इस हुण तक दे मुख समाचार, असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण समा हो रहा जी प्रोग्राम तवे वाला रेडियो दा। इस प्रोग्राम विच आओ सुनदे हां अज दे प्रोग्राम दा पहला गीत सुरिंदर कौर ते प्रकाश कौर दी आवाज़ विच।

कीर्तन दा सीधा प्रसारण मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 5:30 बज चुके ने, आओ हुण सेवन करते हैं साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। इस प्रोग्राम दे प्रायोजक हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर, संदेश प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर श्री हरजिंदर सिंह तांबी।

0: गुरबाणी विचार इस प्रोग्राम दे प्रायोजक ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सेवादार गुरबाणी विचार जेड़ा आकाशवाणी जलंधर तो बहुत लंबा अरसा चल रहा, जो वसीले नहीं सी होंगे, लोग तकाला अपना रेडियो ऑन कर लेंगे सी, ते अद्धे घंटे का यह गुरबाणी विचार प्रोग्राम आकाशवाणी जलंधर तो प्रसारित किया जाता। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वह संस्था जिस संस्था ने प्रबंध गुरबाणी के प्रचार से प्रसार और कित को कुदरती आफता आ जाए उत्थे बढ़ चढ़ के अपना योगदान पाती है, तो ये वसीले गुरु की गोलक ते कुछ जायदात है। 105 साल पुरानी संस्था, ये जिथे वख वख गुरद्वारा साहबाना का प्रबंध आ, उत्थे नाल दी नाल मैडिकल यूनीवर्सिटी, मैडिकल कॉलेज, मैडिकल यूनीवर्सिटी बल्ले विखे, जिथे अनकोलोजी का भी बहुत बड़ा जिहड़ा इलाज किया जाता। सो ये संस्था ने विद्या के खेत्र के लगभग 108 स्कूल कॉलेज जिहड़े आ वो साडे होण दे विच आए आ, जिन्हां दे विचों गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनीवर्सिटी, उहदे नाल दी नाल साडे कोल बहुत सारे ट्रस्ट भी चलते आ। सो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी बाहर जथेबंदी जिहड़ी हर एक पक्ष ते, चाहे आर्थिक पक्ष के तौर दे उत्ते वख वख कई बारी लोड़वंद हुंदे उहनां नूं सहायता भी दित्ती जांदी आ, ते एक नवां प्लान भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पुट्टी आ कि निश्चय अकैडमी जिहड़ी IAS ते IPS बच्चों लई सैक्टर 27 दे विच कलगीधर निवास च चलती आ, जिथे साडे हर साल 25 बच्चे आउंदे आ, सारा कुछ रहन सहन पढ़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर सारा फ्री। इसे तरह जहाज़ा गुरचरण सिंह टौड़ा इंस्टीट्यूट दे विच असीं जुडिशियल अकैडमी निश्चय अकैडमी दे तौर ते डिवेलप कीती आ, जिथे भी 25 बच्चे हर साल उहदे विच हिस्सा लैंदे, बहुत सारे बच्चे साडे सिलैक्ट भी होए आ। असीं हुण नवीं लहर शुरू कीती आ, हर एक हलका मैंबर दे एक गुरम दा समागम ते नाल अमर संचार दी लहर प्रचंड कीती जाऊगी। बहुत बहुत धन्यवाद।

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तुर्की बाणी दे भंडार हन। ये अमृत बाणी ब्रह्म विचार है। प्रभु प्यारे भगतों के मन विच इस बाणी का निवास ही रहिंदा है ते गुरमुखां दे हिरदे विच वी बाणी का ही वासा हुंदा है। मानो जीवन का आधार ही अमृत नाम है। प्रभु दे नाम सिमरन दी ताकीद पंचम पातशाह राग सोरठ विच उचारे हुए शब्द विच करदे ने कि हे भाई सच्चे हरि नूं सिमरो, इसलिए सत पुरशां दी संगत करके हरदम उस नूं याद रख के आत्मिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। जिवें प्रभु सदा सहाई है, उसे तरह उसकी कथा अते कीर्ति भी सुखदायक है। उस पूरे गुरु की बाणी उपदेश जप के आनंद विच विचरो। हे प्रभु, तेरा अमृतमई नाम जो भी सिमरद है वह उच्चे आत्मिक जीवन वाला हो जाता है। जिसते एक कर्म या बख्शिश हो जाती है वह प्राणी निर्मल हो जाता है। उस दियां सारियां अड़चणा ते दुख दूर हो जाते ने ते मन गुरु की चरणी लग जाता है। वह सदा प्रभु दे गुण गायन करता होया प्रभु दे रंग विच ही रंगिया होया जागृत अवस्था विच आ जाता है। प्रभु हरेकिया बातां सरवण करिया वडभागे प्राणी नू मन चाहे फल प्राप्त हो जाते।

उसके जीवन सफर विच प्रभु आप उसका मित्र बेली रहिंदा है। सोरठ राग विच बाणी के बोहित पंचम गुरदेव फरमाउंदे ने, अमृत नाम परमेसर तेरा जो सिमरै सो जीवै, जिसनु कर्म प्राप्त होवै सो जन निर्मल थीवै। सरन करदे हैं भाई निर्मल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता।

0: नाम परमेसर तेरा, जो सिमरै सो जीवै, जिसनो कर्म प्राप्त होवै सो जन निर्मल थीवै। इस शब्द गायन की तसी पाई निर्मल सिंह ते उन्हें दे रागी जत्थे ने। खसम की बाणी बो उपदेशात्मक है, बाणी दे रंग विच रंगिया जीव ब्रह्म नाल एक सुर हो जाता है। श्री गुरु अर्जन देव जी गौड़ी सुखमणी रचना की 24वीं अष्टपदी के पहले पदे विच जीव का मार्गदर्शन करते ने कि उस पूर्ण गुरु दियां सिख्यावां सुन के प्रभु दे नेड़े हो के दर्शन करो, हर स्वास उस गोबिंद प्रभु नूं सिमरो, इंच मन दियां सारियां चिंतावां दूर हो जांदियां ने। होर दुनियावी आसां दा त्याग करके इन्हां भावनावां नूं तज के संत पुरशां दे चरणां दी धूड़ दी जाचना करो। आपा भाव छड के उस अगे बेनती करो कि साधां दी संगत दी जाच आ जाए, तां ही इस अगन संसार विच्चों पार हो सकीदा है। इस जीवन विच हरी प्रभु दे नाम तन नूं एकत्र करो ते पूरन सतगुर अगे सदा ही नतमस्तक रहो। गुरु साहिब फरमाउंदे ने, सास सास सिमरह गोबिंद। ए वार्ता सुना रहे ने डॉक्टर हरपिंदर जीत कौर।
1: ये पवित्र फरमान सुखमनी साहिब जी दी अमृतमय बाणी दे 24वीं अष्टपदी दे पहले पदे विच सुभायमान है। संबंधित श्लोक विच पंचम पातशाह जग्यासु साधक दे उच्च आत्मक अवस्था दा जिक्र करदे हुए जीव नूं सीधा ही नाम सिमरन दे मंडल विच प्रवेश करवा दिंदे हन। जिस भी आत्मक साधक ने पूरे प्रभु दे पूरे नाम नूं एकागर चित नाल सिमरिया है, उस दा पूरे प्रभु नाल मिलाप हो गया है। इसलिए हे जीव, तू भी पूरे सतगुरु दे उपदेश नूं ध्यान नाल सुन, प्रभु परमेश्वर नूं अपने अंग संग वेख अते उस गोबिंद वाहिगुरु दा स्वास स्वास सिमरन कर, क्योंकि वाहिगुरु दा दित्ता हर स्वास अनमोल है। गुरवाक है, दम दम सदा संभाल दा, दम ना बिरथा जाए। समुची गुरबाणी विच नाम अते सिमरन दी महिमा हर शब्द विच गायन कीती गई है। गुरु साहिबान भगतां पट्टां ते गुरसिखां दी अंतरीव सांझ नाम सिमरन दे सिद्धांत विच ही दृष्टमान हुंदी है। नाम तो भाव सर्व व्यापक प्रभु दी हस्ती होंद अते परम सत्ता तो है, अते सिमरन तो भाव इस आरोप आदृश सत्ता नूं सिमरते विच वसाउणा, याद करना, चेते करना है। पर जीव त्रैगुणी माया दे भरम विच फस के उस नूं भुल चुका है। ऐसे निरंकार नूं याद विच वसाउण लई, संबोधन करन लई, उस दा रूप बनन लई असी अखरी नाम दी टेक लैंदे हां। अखरी नाम, अखरी सलाह, अखरी ज्ञान, गीत गुण गाह। गुरबाणी विच प्रभु दे अखरी नावां दी सहज ही वरतों कीती गई है, जिवें राम, रहीम, अल्लाह, खुदा, हरि, बीठल, भगवान, भगवंत, गोबिंद, माधो आद। भावें असीम अनंत प्रभु नूं नावां दी कैद विच नहीं बन्या जा सकदा, फिर भी उस दी महिमा प्रगट करन लई, उस दे गुण गाउन लई संतां भगतां ने उस नूं अनेक नावां नाल पुकारिया है। गुरु ग्रंथ साहिब विच पाठ साहिबान वल्लों वाहिगुरु शब्द दी वरतों परम सत गुरु परमेश्वर लई हुई है। पाठ ज्ञान जी दा फुरमान है, सेवक के परपोर जुग जुग, वाहिगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभु।

0: निगाह न बिरथा जाए, जन्म मरण का पौ गया, जीवन पदवी पाए। साहिब श्री गुरु अमरदास जी की इस पावन रचना का गायन किया सी भाई ओंकार सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सहयोग से यह यात्रा जारी रहेगी। इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडिया चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र लोगों को अवैध हिरासत में न लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अक्वेजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अक्वेजम की सेवाएं समाप्त कर दी थी। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए और सांसद के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और तत्काल निलंबित करने की मांग की। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुष्टि की है कि तेल टैंकर MTGEM पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 22 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये घटना रास अल खैमा तट के पास जहाज में आग लगने के बाद हुई। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। मृतकों में 4 सऊदी और 8 विदेशी नागरिक हैं। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में आज सवेरे अचानक आई बाढ़ से अनेक पुल और घर बह गए। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से इंदौर में खेला जाएगा। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर है। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षि कश्यप को हराया। उधर मिस्र में उदयवीर सिद्धू ने निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। लद्दाख पुलिस बाइक रैली टीम गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गई है। रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, एकजुटता और नशा मुक्त भारत को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना का जहाज सह्याद्री अभ्यास इंद्र 2026 में शामिल होने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंच गया है। ये द्विपक्षीय अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां।
3: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है।

0: सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवें प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: जिस तरह तुहानूं पता ही है कि झोने की जिहड़ी खरीद है वो 1 अक्टूबर

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: शुरू करिए इन्वेस्टमेंट दा सब।

0: सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: टिंकू जी 100 ग्राम पेड़े दियो।
2: 250 ग्राम तो कट नहीं मिलेगा।
1: ओए क्यों,
2: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
3: ओ भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगता।
4: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
3: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट। इस विच नो मिनिमम बैलेंस, पर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज तो।
5: दे भाई, RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। माइनिंग विभाग ने जिला रूपनगर विच गैर कानूनी माइनिंग च शामिल 5 व्यक्तियां नूं गिरफ्तार करके 5 वाहनां ते मशीनां जब्त कीतियां। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ते जम्मू कश्मीर के कारीगरां दी सहूलत ते एक डिजिटल मार्केट प्लेस kalaanubhav.com दी शुरुआत। पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड वालों मोहाली विखे इंटरनेशनल पंजाब प्लास्टिक एक्शन समिट 2026 का आयोजन। प्लास्टिक रैंक पॉइंट के विज्ञानक निपटारे पर जोर दिया गया। देवी दुर्गा की पूजा का 9 दिन का त्यौहार नवरात्रे आज धार्मिक श्रद्धा के उत्साह नाल शुरू होया। आज जलंधर समेत सूबे के वक् वक् जिलों गरज चमक नाल मीह पिया। भारत और वेस्टइंडीज दरमियान मर्दों का तीजा 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच अज इंदौर च शामी 7 बजे खेडा जाएगा। खबरां विस्थार नाल। पंजाब सरकार सूबे भर में गैर कानूनी माइनिंग गतिविधियां खिलाफ सख्ती करदियां नियमों की उल्लंघना करने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल च लिया रही है। माइनिंग ते भू विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने दस्सिया कि गैर कानूनी माइनिंग खिलाफ मुहिम तहत माइनिंग अधिकारियों ते पुलिस की सांझी टीम ने रात समय कार्रवाई करदियां जिला रूपनगर के चमकार साहब खेत्र च गैर कानूनी माइनिंग विच शामिल 5 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार करके 5 वाहनों ते मशीनों नूं जब्त कीता है। कार्रवाई दौरान जब्त किए गए वाहनों विच एक मशीन समेत 3 GCB मशीना अति 2 टिप्पर शामिल ने। गिरफ्तार किए गए 5 व्यक्ति चमकार साहब ते जिला रूपनगर के रहने वाले ने। इस बारे मुकदमा दर्ज किया गया। श्री गोयल ने कहा कि गैर कानूनी माइनिंग कारण सूबे के कुदरती वसीलों को नुकसान पहुंचाने या फिर सरकारी खजाने को टालने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ते जम्मू कश्मीर के कारीगरां दीयां चुनौतियां दा हल करन बारे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच अज एक डिजिटल मार्केट प्लेस kalaanubhav.com दी शुरुआत कीती गई है। भारत सरकार दे प्रमुख विज्ञानक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने इस डिजिटल मार्केट प्लेस की शुरुआत की। इस नूं उत्तर भारत के कारीगरां ते रवायती शिल्प कला नाल जुड़े उद्यमां नूं देश भर दे खरीदारां नाल सिद्धियां जोड़न लई तैयार किया गया। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश बाजार तक पहुंच नूं बेहतर बनाना, पायदार रोजी रोटी नूं उत्साहित करना ते खेतर दी अमीर हथकड़ी विरासत नूं संभालना है। kalaanubhav का उद्देश पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ते जम्मू कश्मीर के कारीगरां दीयां चुनौतियां का हल करना भी है। इस मौके पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के वाइस चांसलर प्रोफेसर मीनाक्षी गोयल, विज्ञानक सकत्तर डॉ परविंदर सैनी अते डायरेक्टर प्रोफेसर रजत संधीर भी मौजूद रहे। इस दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी के सेहत केंद्र च उत्तरी भारत का पहला डिजिटल पोडियाट्रिक क्लीनिक शुरू किया गया। इसका उद्देश्य शुगर कारण पैरों च होने वाली गंभीर बीमारियों की समय सिर पछाण करना है। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के आधार पर इस सहूलत में 20 मिनटों तो भी घट समय च पैरों दी नसा, खून के संचार, दबा की वंड, चाल संतुलन नाल संबंधित वक् वक् तरह की जांच की जाएगी। भारत सरकार के प्रमुख विज्ञानक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने बीते दिन इस क्लीनिक का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना PUITI रोपड़ रीजनल एक्सीलेटर फॉर होलिस्टिक इनोवेशन फाउंडेशन वालों की गई है। पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड वालों अज मोहाली स्थित अमेरी यूनिवर्सिटी विखे इंटरनेशनल पंजाब प्लास्टिक एक्शन समिट 2026 का आयोजन किया गया। इस विच नीति करन वाले उद्योगपतियां, सिविल सोसायटी के नुमाइंदियां, वातावरण माहरां ते अंतरराष्ट्रीय संस्थावां ने शिरकत की। समिट का उद्देश प्लास्टिक प्रदूषण नाल नजिठण लई प्रभावशाली हल लभना ते प्रगतिशील रंगला पंजाब दे संकल्प नूं अगे वधाउणा रहा। इस समिट ने आलमी पद्धर के ज्ञान के आदान प्रदान, तकनालोजी आधार उपरालों से प्लास्टिक की समुची कीमत लड़ी च जवाबदेही मजबूत करने लई एक मंच प्रदान किया। इस मौके स्पष्ट सुनेहा दिता गया कि प्लास्टिक की रहत खूंद का सुरक्षित इकट्ठ विज्ञानिक प्रोसैसिंग ढुकवा प्रबंधन यकीनी बनाया जाना चाहिए ताजो खुराक लड़ी में दाखिल न हो, मिट्टी के पानी को प्रदूषित न करे तो लोगों हानिकारक प्रदूषकों के संपर्क में आने से बचाया जा सके। इस मौके पंजाब के मुख्य सकत्र KAP सिन्हा समेत होर प्रमुख शख्सियत भी मौजूद रही। बोर्ड वालों पंजाब के 6 मुख्य शहरों में किए गए प्लास्टिक वेस्ट ब्रांड ऑडिट के नतीजों को भी इस मौके उजागर किया गया। ये खबरें तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साड़ा एक्स हैंडल है @RIR

0: पटवारी साहब घरे हो।
1: आजू आजू आजू बल साहब आजू।
0: पटवारी साहब जय हिंद जी।
1: जय हिंद जी जय हिंद जी। होर सुनाओ बल साहब की हाल चाल तुहाडा?
0: हाले चाले वाह वाह वधिया चढ़दी कला। पटवारी साहब तुसी सुनाओ
1: तगड़ा तगड़ा जी।
0: जी
1: देखो गल इदां है जी कि ये जिहड़े हाले चाले जदों असीं सुणदे आ ना,
0: हाँ जी,
1: उहदे विच अज एक बहुत अहम दिन है।
0: अच्छा जी,
1: अज बालड़ी दिवस है।
0: ठीक है जी,
1: कौमांतरी बालड़ी दिवस।
0: ठीक है जी।
1: हाँ जी, ये जदे आप देखते हैं ना कि जड़िया साड़िया धिया ने,
0: हाँ जी,
1: वैसे तो हूँ वह हर खेत्र दे विच,
0: हाँ जी,
1: पूरी मल्ला मार दिया पईया ने।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: तो धिया जे तुसी कहो भी फौज लै लो,
0: हाँ जी,
1: कित पुलाड़ लै लो
0: जी,
1: है जी, या फिर कोई तुसी सरकारी नौकरी विच तो हूँ आम ही सारिया,
0: हाँ जी,
1: कुड़िया काम कर दिया पईया ने।
0: कहिंदा कोई खेत्र है ही नहीं जिहदे विच लड़कियां जिहड़ियां आपां कह दईए भी पिछे होण
1: ना होण। बिल्कुल सही गल है जी, पिछे ना होण। ते पर इह सीगा जी, इह जिहड़ी इक नामुराद बीमारी सी ना पहलां,
0: हाँ जी,
1: वो ये हुंदा सी भी कुड़ियां नूं ना वह सही तरीके दे नाल जिहड़े परिवार भी सी ना
0: जी,
1: वह उन्हां नूं महत्व नहीं दिंदे सी
0: जी।
1: उन्हां दी सोच यह हुंदी सी वह कुड़ी हो गई,
0: हाँ जी,
1: किद्दां पालांगे,
0: बिल्कुल जी,
1: किवें इहदा विआह करांगे,
0: हाँ जी,
1: दूजे घर जाके किवें रहूगी।
0: वो तो बाद की गल है कि पहले तो जमण जमण सार ही जमण देंदे ही नहीं सी,
1: जमण हाँ
0: कुख विच ही मरवांदे सी, या फिर जमण तो बाद असीं सुणिया भी घड़े विच दब के ते लड़कियां नूं दब दित्ता जांदा है।
1: चंगा नहीं समझते सी,
0: हाँ जी।
1: या फिर तुसी देखो ना भी जे आप बालड़ी की गल करिए ते पहला तो एवें हुंदा सीगा कि छोटी उम्र च ब्याह कर देंदे।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल,
1: है जी,
0: हाँ जी।
1: ते जदों उन्हूं को समझ नहीं हुंदी सी,
0: हाँ जी,
1: धियां नूं तुसी उन्हूं पढ़न दिओ, उन्हूं अपने पैरां ते खड़े होण दिओ,
0: बिल्कुल जी,
1: उस तो बाद तुसी उहदा जो भी हिला फसिला करना वह करना चाहिए।
0: सही गल है जी।
1: पर उदों खैर जी जिहड़ी पुरानी सोच सी,
0: हाँ जी,
1: हुण भी वैसे किते किते देख सुन मिलता
0: है जी,
1: कि कुड़िया जल्दी उन्होंने विह करता जाता है,
0: हाँ जी,
1: या फिर जी कुख की गल की भी कुख च ही मार दिता जाता है,
0: हाँ जी,
1: ये भी रुझान जो है हम घटता तो पाया पर हले भी यह है,
0: हाँ जी,
1: है जी। तो यह जिहड़ियां सोच है ना जी,
0: जी
1: इस सोच न खत्म करना चाहिए।
0: जिथे कितने जी सिक्ख्या म्यारी सिक्ख्या की घाट आ, उत्थे ये जिहड़े कह लो भी समाजिक कुरीतियां हले भी आप देख सकते हैं।
1: देखो ना ये दिन लड़कियां नूं दरपेश चुनौतियां नाल निजिठण ते लड़कियां दे सशक्तिकरण दे लई उन्हां दे मनुखी अधिकारां दी पूर्ति नूं उत्साह करन दी जरूरत ते ध्यान केंद्रित करदा है।
0: ठीक है जी।
1: वैसे तां जी ये जिहड़ा दिन हैगा ना, ये दिन सानूं जिहड़े जिहड़ियां साडे घर दे विच धीआं ने या समाज विच विचरदियां ने सानूं उहनां नूं उत्साहित भी करना चाहिए।
0: बिल्कुल जी।
1: जे उह कितें खेड दे विच ने या उह कोई इदां दा कोई काम कर रहीआं ने जिहदे नाल समाज दा नाम रोशन हुंदा है, परिवार का नाम रोशन हुंदा है, सानू बजाए कि उन्होंने ये कहन दे नहीं नहीं तू कुड़ी है तेरे को कुछ नहीं होना,
0: हाँ जी,
1: सानू ये कहन दे, सानू उन्होंने उत्साहित करना चाहिए, सानू जिवें अंग्रेजी च कहिंदे ना मोटीवेट करना चाहिए,
0: बिल्कुल जी सही,
1: ताँ जो उन्हां दा जिहड़ा होर भी वह वधिया तरीके नाल काम कर सकन
0: जी।
1: है जी, वड्डे वड्डे शहरां विच तां देखो कुड़ियां जिहड़ियां है मोढ़े नाल मोढ़ा ला के काम करदियां ने,
0: बिल्कुल जी,
1: पर पिंडां च किते ना किते हले यह सोच रखी जाती है।
0: हौली हौली फर्क पै रहा, उदां
1: पै रहा
0: जी,
1: पै रहा फर्क पै रहा जी, जिहड़े साडे आम लोग ने वह हुण इन्हां चीज़ां वल ध्यान दे रहे ने
0: जी।
1: पर खास तौर पर ना जिहड़ियां छोटियां कुड़ियां जिहड़ियां अज बालड़ी दिवस की आपां गल कर रहे हां,
0: हाँ जी,
1: उन्हां लई सानू ज्यादातर तो ध्यान देने की लोड़ है।
0: बिल्कुल जी।
1: क्योंकि एक तो जिहड़ी तुसीं कुख वाली गल कीती है,
0: हाँ जी,
1: या असीं गल करदे हां जिहड़ियां छोटियां कुड़ियां ने उन्हां नूं असीं पढ़न तो भी
0: हाँ जी
1: किसी वेले शहरां विच ते रुझान नहीं है,
0: हाँ जी,
1: पर हले भी कई जिहड़े पेंडू एरिया ने,
0: हाँ जी,
1: जिहड़े साडे देश दे किते इदां दे कोने ने जिथे कि ज्यादा विकास हले होण दी जरूरत हैगी,
0: हाँ जी,
1: उत्थे कुड़ियां नूं हले पढ़न तो
0: हाँ जी
1: थोड़ा रोकिया टोकिया जाता है,
0: माड़ी गल है जी।
1: तो यह चीजा थोड़ा जा आपां नूं देखना चाहिए थे।
0: हाँ
1: अज दे दिन सानू सारयां नूं प्रण भी लैना चाहिए
0: जी
1: कि कुड़ियां नूं जिहड़ा है वह बराबर का हक मिलता तो पिया,
0: हाँ जी,
1: पर जिथे कितें कोताही हुंदी है,
0: हाँ जी,
1: उत्थे असीं सारयां नूं सानू लामवद करना चाहिए।
0: सही गल
1: है, ये जिहड़ियां चीजा है वह ना हो
0: जी।
1: है जी, अज फिर असीं इस मौके ते,
0: अच्छा जी,
1: बालड़ी दिवस है
0: जी,
1: क्यों ना आपां तुहानूं इक वार्ता सुना दईए?
0: सुना दिओ जी।
1: साडे कोल सिमरत कौर हुणी आए।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 25वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रही है सोनू सूद।
1: श्रोताओं, आप जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला सुन रहे हैं। आज चर्चा का विषय है आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर, और आज हमारे साथ दो आर्थिक विश्लेषक

0: निदेशक प्रोग्राम में शामिल हैं शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। शुभमोय, अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में।
1: बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए।
2: धन्यवाद सोनू जी।
0: अनिल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो 12 वर्ष गए हैं, इसमें जिस तरह का आर्थिक सुधार हुआ है, खासकर करों की अगर हम बात करें, जो अप्रत्यक्ष करों में जिस तरह के कहें कि रेवोल्यूशनरी एक बदलाव आया है, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में आया, उसे आप कितना मील का पत्थर मानते हैं?
2: हमें अगर इसको समझना है, जो सुधार आर्थिक व्यवस्था में किया है सरकार ने, तो आपको 1991 जाना पड़ेगा, जबकि जो हमने रिफॉर्म्स, देश ने रिफॉर्म्स अंडरटेक किए उस वक्त, तो वो था, उसका मुद्दा था कि भारत सरकार क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बड़ा इसमें जो एग्जांपल था वो था डी लाइसेंसिंग, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एग्जिट करना था काफी सेक्टर से। अब आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, जो पिछले 12 साल में जो किए हैं, ये सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें है कि ये नया जनरेशन रिफॉर्म्स जो है, इन्होंने सरकार का फंक्शनिंग ही बदल दिया। तो पहला था कि सरकार क्या करेगा, अब सरकार कैसे फंक्शन करेगा, वो ही है फंडामेंटल डिफरेंस। तो उसमें जो जीएसटी है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका, कि ये एक टैक्स था जीएसटी, जब मतलब 2001 से इस पे चर्चा चल रहा है, उससे पहले से, लेकिन किसी सरकार ने इसको कभी इम्प्लीमेंट करने का मतलब राजनीतिक साहस नहीं दिखाया और एक राजनीतिक कंसेंसस नहीं जुटाया। इसमें अरुण जेटली जी को मतलब याद करना चाहिए, वो स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उन्होंने एक इसको एक एंकर किया, एक लीडरशिप किया। और इस टैक्स में जो सबसे बड़ा मतलब जो एक लिसनर जो समझ सकता है बड़ी आसानी से, ये इन्होंने देश को एक आर्थिक लेवल पे यूनिफाई कर दिया, एक इकोनॉमिक एंटिटी यूनिटी बना दिया। पहले था देश में, क्योंकि अलग अलग कर के व्यवस्था थे, तो हर स्टेट का एक अलग होता था, तो 38 सॉवरेन टेरिटरी से सामानों को जाना पड़ता था। आप सोचिए कितना फ्रिक्शन होता था, कितना इनएफिशिएंसी होता था लॉजिस्टिक्स, मतलब आप तमाम चीजों में देखते हैं अड़चन कैसे। तो इन्होंने 17 मेजर सेंट्रल और स्टेट टैक्स और 13 सेस को एक करके जीएसटी बनाया। तो ये मतलब देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, दोनों को अगर मिलाएं, और इसका अभी हमें फल साफ नजर आ रहा है। अब जीएसटी रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ रहा है सिस्टम में। तो ये जीएसटी जो है, भारत का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म है पोस्ट इंडिपेंडेंस।
0: जी शुभमय, आपके पास आते हैं और इस पर ही आपकी भी हम प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही कहें कि क्रांतिकारी रिफॉर्म है। जैसा अनिल ने बताया कि नेशनल मार्केट बनी है, फॉर्मलाइज हुई है इकोनॉमी, आप बताएं कि जीएसटी क्यों आपके अनुसार, एज एन एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है इतने सालों से लंबित क्यों था, और अब जो जिस तरह से इसको उठाया गया और शुरू में जिस तरह की कुछ कहें कि एक भावना थी कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कैसे आप देखते हैं इसकी जर्नी?
1: मैं काफी गौर से सुन रहा था अनिल जी के काफी भावनात्मक जो विचार थे जी। और मैं उससे कहीं बहुत बहुत तरीके से मैं उससे सहमत हूँ। जीएसटी अनिल जी जो बता रहे थे, उसी कड़ी में अगर चलते हुए हम देखें, तो भारत में 2014 से चलते हुए अभी तक की जो श्रृंखला है, उसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो सुधार का कार्यक्रम हुआ है वो है कैपिटल, लेबर, लैंड और कैपिटल। इन तीनों में अगर हम बांटे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इनमें कैपिटल में सबसे ज्यादा सुधार की मात्रा आई है। और ये इसीलिए, इसमें अगर हम देखें जीएसटी को, तो जीएसटी अकेला ही नहीं है, जीएसटी के साथ अगर आप एक और बहुत जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण बदलाव जो लाया गया, वो है अपना बैंक्रप्सी बिल, इंडियन इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ बैंक्रप्सी इन इंडिया। ये बहुत बड़ा एक बदलाव था। एक तरफ कैपिटल तैयार करना, दूसरी तरफ कैपिटल जो बदलाव आएगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, ये दोनों मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण पदक्षेप थे। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ कि सरकार लोगों के पास जो सीमित कैपिटल अवेलेबल है, संसाधन अवेलेबल है, वो मुआयना कर रहे थे। वो चीज पहले संभव नहीं था। अभी क्या हुआ कि जीएसटी और आईबीबीआई दोनों एक साथ में, एक तरफ तो लोगों के लिए सुविधा हो गया कि भाई हम अगर हमारी कोई बिजनेस चलते हुए बिजनेस में कोई अड़चने आ गई, कोई बिजनेस को बंद करने की जरूरत पड़ी, तो वो एक सिर्फ रोजमर्रा का इंपेयरमेंट ऑफ कैपिटल के हिसाब से देखा जाएगा और उससे मैं जल्दी से उससे निपट के मैं आगे का प्रक्रिया शुरू कर सकता हूं। और आप देखें स्टार्टअप्स की हमारी इतनी जो तादाद बनी है, वो इसी भरोसे पे बनी है कि स्टार्टअप में अगर चलते हुए कि

0: जगह पे स्टार्टअप नहीं चला और होता ही है
1: जी
0: तो वो अचानक लिक्विडेशन वगैरह में उनको कोई अड़चन ही नहीं आता है, ये बहुत बड़ा
1: जी
0: मील का पत्थर है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में अगर हम जीएसटी की बात करें तो वो उसी श्रृंखला में कि टैक्स स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही सरल सुविधाजनक सिस्टम बन गया है। भारत में अगर हम बहुत सारी जो इसके बाद के जो बदलाव आए हैं वो बदलाव इन दोनों से जुड़े हुए हैं कि इन दोनों को एक बेस बनाकर फिर आगे लोगों को भरोसा आया है, रुचि आया है कि भाई वो कैपिटल लेकर कोई नया बिजनेस, कोई नए संभावनाओं के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं।
1: जी
0: जहां तक आपके सवाल थे कि ये क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना का सबसे बड़ा चीज था मंशा, और उसका वजह यह है कि हम जीएसटी किसके ला रहे थे। जीएसटी एक कड़ी में है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कड़ी के अंतर्गत होकर आया और तभी जाके जीएसटी बना। 2017 में ये जीएसटी का प्रक्रिया शुरू हुआ और जैसे आप देखें कि सालों साल चलते हुए वो जीएसटी एक एक करके उसमें जो अड़चने थे वो

0: हैं कि हम जीएसटी किसके लिए ला रहे थे। जीएसटी एक कड़ी में है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कड़ी के अंतर्गत होके आया और तभी जाके जीएसटी बना। 2017 में ये जीएसटी का प्रक्रिया शुरू हुआ और जैसे आप देखें कि सालों साल चलते हुए वो जीएसटी एक एक करके उसमें जो अड़चने थे वो सिंप्लीफाई किए गए। तो उसमें भी जैसे हर साल में जो मीटिंग होता है, और अगर वो जो मीटिंग शुरुआत में हुए थे कई सारे मीटिंग्स करना पड़ा था, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें थे, चुनिंदा सवाल थे जिनको हल करना सारे राज्यों को मिलके और केंद्र के साथ मिलके तो उसका निपटाना जरूरी था। तो इसलिए ये किसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन मान सकते हैं।
1: जी, डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स एक ऐसा कदम रहा जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।
2: हम देख रहे हैं हर महीने जब जीएसटी कलेक्शन की फिगर्स आती हैं तो बहुत रोबस्ट आती हैं, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है। सो आपको लगता है कि अब जैसा आप कह रहे हैं कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है सरकार का, तो लोग टैक्स इवेजन से भी अब बच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उसमें टैक्सेस पे करने में वो अपने आप को एक तरह से कह रहे हैं कोऑपरेशन का एक भावना से टैक्सेस टैक्स सिस्टम में शामिल हो रहे हैं।
3: बिल्कुल सोनू, आपने सही मुद्दा पकड़ा है। मैं आपको भारत के आर्थिक इतिहास में बहुत साल पहले ले जाता हूँ। 1960-1970 में इनकम टैक्स जो होता था 90% के ऊपर होता था, आई थिंक 97% होता था। तो आप खुद ही सोचिए, जो इंसेंटिव था टैक्स इवेजन था, टैक्स अवॉइडेंस नहीं था। उसमें दो, ये दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। इवेजन में मतलब आप टैक्स पे करना नहीं चाहते, आप छुपा के आप इनकम छुपाते हो। अब जीएसटी जब आया ना, तो आपको जब टैक्स क्रेडिट मिला, अब जीएसटी का एक्चुअली समझना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का बेसिक पॉइंट क्या है। ये जीएसटी पहले जो होते थे इनडायरेक्ट एक्साइज वगैरह, वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे था। अब जो है पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे टैक्स लगता है, तो मतलब उसके साथ में जो भी टैक्स पे करता रहेगा रास्ते में उनको क्रेडिट मिलेगा
2: जी।
3: तो वो क्रेडिट आपके खर्चे से कम होगा, तो आपका उतना मार्जिन रहेगा, राइट? जो पहले होता था वो टैक्स बढ़ते जाता था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, जो कंज्यूमर लेवल पे फाइनली आता था बहुत ही इम्पैक्ट ज्यादा होता था। तो एक तो टैक्स का इंसिडेंस और इम्पैक्ट कम हुआ, दूसरा क्योंकि आपने टैक्स क्रेडिट देना शुरू किया तो कंपनीज को इंसेंटिव रहा कि जो इवन छोटे मध्यम वर्ग एमएसएमई, आपने जो आंकड़ा दिखाया ना 60 लाख से 1,70,000 करोड़, तो ये इसमें ज्यादातर एमएसएमई है। तो इनका भारत में कुछ आई थिंक 65,000 कुछ एमएसएमई है, मेरे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो इनकी जो रजिस्ट्री हुई है ना, इनके कारण पड़ा है, तो इनकी इंसेंटिव रही। पहले ये अवॉइड करते थे सिस्टम में आने से, कैश का जो ट्रांजेक्शन करते थे। तो आपको याद है नोटबंदी में जो तो हुआ था 2016 में, तो उसका मुद्दा यही था कि इसके कारण ब्लैक मनी जनरेट होता है। तो इसके जो फायदे है ना, आपने ट्रांसपेरेंट रेजिम बनाया, फिर आपने रेट सेट कर दिया, जो रेगुलेटरी ओवररीच है। पहले एक्साइज इंस्पेक्टर आपके फैक्ट्री के दरवाजे पे पहुंच जाते थे, आज उनको कोई कारण बताना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा अगर वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन जो इम्पैक्ट, जो एक जो आपने बोला कंप्लायंस, वो एक वॉलंटरी कंप्लायंस रहा है। मतलब उद्योगों में एक इंसेंटिव है कि हम टैक्स कंप्लायंट रहे, हमें कम झमेले हैं, सारा ऑर्गेनाइज्ड है। और इसका एक सबटेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये जो रिसीट होते हैं ना, ये पेमेंट रिसीट्स वगैरह जो कैश रिसीवेबल्स होते हैं कंपनी के बुक्स पे, आजकल जो फिनटेक्स आ रहे हैं, जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने इसको और लिबरलाइज किया है क्रेडिट पॉलिसी में, इस अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में आपके जो ये रिसीवेबल्स हैं इसके बल पर आपको क्रेडिट मिलेगा। आपको कोलैटरल मतलब घर फैक्ट्री गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी लोन के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबटेक्स है। तो जीएसटी जब हम देखते हैं ना, एक फाइनल पॉइंट ही नहीं देखना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, इसके जो फायदे हैं अनेकों फायदे हैं।
2: शुभम भाई, आपके पास आते हैं, जो एक कर डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो एक ऐसी चीज है जिस पर हर नागरिक की नजर होती है जब बजट भी आता है। तो इनकम टैक्स रिफॉर्म्स जो हुई है पिछले 12 वर्षों में और हालिया जो रिफॉर्म्स हुई है, इनको आप कैसे देखते हैं? जो फेसलेस असेसमेंट है या जिस तरह से इस नई जो कर प्रणाली आई है जो ऑप्शनल थी और जिसमें आपका रेट लोअर है लेकिन एग्जेम्पशंस नहीं है, तो ये जो पूरी जो एक जो बदलाव है उसके क्या क्या पहलू आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से?
0: देखिए, इनकम टैक्स आदतन एक टैक्स ऑन लेबर है कि लोग जो परिश्रम करते हैं उसके ऊपर टैक्स है। निश्चित है अगर ऐसा टैक्स अगर हो तो इस टैक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोगों

0: को परिश्रम का जो एफर्ट का जो रिवॉर्ड है वो लगे कि सरकार के पास ही जा रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो पिछले साल जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो बदलाव लाए टैक्स रेट्स में, 12 लाख तक के इनकम को उन्होंने इनकम टैक्स से रियायत दे दी, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये इनकम टैक्स में जनरली बदलाव बहुत जल्दी नहीं किया जाता है, 5 साल 6 4 साल वगैरह के अंतराल में किया जाता है। और लेकिन हर बारी वित्त मंत्रियां थोड़े थोड़े करके इस टैक्स में कुछ कुछ मतलब जैसे कहते हैं लोगों के लिए लुहाने बनाते थे, इन्होंने एक झटके में इसको उठा के 8 लाख से उठा के 12 लाख कर दिए।
1: जी
0: अपने आप में ये बहुत बड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया कि भाई इतना तक के इनकम, 12 लाख भारत जैसे देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पर कैपिटल इनकम के हिसाब से अगर देखें तो ज्यादातर क्या ओवरवेलमिंग परसेंटेज ऑफ लोग जो इनकम कर रहे हैं सैलरी से मिल रहा है वो 12 लाख के सीमा रेखा के अंदर आ जाते हैं, और बाकी डिडक्शंस वगैरह लेकर और भी उसके ऊपर थोड़ा सा 12,75,000 का पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही मूलभूत बदलाव था कि कॉन्फिडेंस इनकम टैक्स पेयर्स के ऊपर।
1: जी
0: दूसरी बात जिसके आपने अपने जो प्रश्न उठाया वो था फेसलेस असेसमेंट। ये फेसलेस असेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई इनकम टैक्स आप दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो इलेक्ट्रॉनिक बना दिया गया है, और वो ही बहुत बड़ा एक बदलाव था कि धीरे धीरे चलते हुए अभी इनकम टैक्स को किसी जगह पे जाके टैक्स देने का संभावना है ही नहीं, किसी सरकारी कर्मचारी से आपकी मुलाकात होगी ही नहीं, क्योंकि टैक्स आप जो भरेंगे और टैक्स के जो फॉर्म आएंगे वो प्री सेट टैक्स फॉर्म आ जाएंगे। यानी कि मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई मेरा टैक्स क्या है, कैलकुलेशन अपने आप में उसी में ही प्री फिल्ड फॉर्म्स में आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा है कि सोचने का भी जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट देखने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर देखने की जरूरत नहीं है, उन सारे जगह से नंबर्स को सबमिट कर प्री फिल्ड टैक्स फॉर्म आ जाता है, और उसमें कहते हैं कि इतना टैक्स आपका हुआ, अगर आपको सही लगता है तो यस, अगर नहीं हुआ तो फिर आप उसमें बदलाव कीजिए।
1: जी
0: तो ज्यादातर लोगों को ज्यादातर क्या अगेन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 90% ज्यादा लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा है कि सोचने की जरूरत नहीं है, टैक्स फॉर्म पहले से भर के आ रहा है और उनके सैलरी के साथ मैच है, बस अब इसको यस कर दो और आगे चलते बनो। तीसरा चीज जो
1: जी
0: किया गया वो है फेसलेस असेसमेंट, यानी कि बाकी जो लोग जिनको टैक्स में कुछ बदलाव की उम्मीद लग रहा है, ये जो टैक्स पे करने के लिए मुझे कहा जा रहा है पेमेंट करने के लिए उसमें मेरी कुछ आपत्ति है, तो उसमें भी सबसे बड़ा जो चेंज कर दिया है कि ये नहीं कि आप बॉम्बे में बैठे हैं तो आपके बॉम्बे के ही इनकम टैक्स ऑफिसर आपको पकड़ेंगे या आपसे बात करेंगे, वो चला गया है कहीं और उनसे आपकी फिर से जो वार्तालाप होगी वो ट्रेन या प्लेन से आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, वो दूर में कहीं और पे बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं और उनसे भी आपकी जो डिस्कशन होगी वो पूरी ऑनलाइन। यानी कि जो पूरा टैक्सेशन प्रोसेस है डायरेक्ट टैक्स का वो इतना इम्पर्सनल कर दिया गया कि लोगों को इस बारे में
1: जी
0: सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए आप जब देख रहे हैं आप जो नंबर का जिक्र किए कि इतना ज्यादा नंबर्स पे लोग टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स फाइलर्स का नंबर आ गया है, तो इसीलिए कि ये प्रोसेस इतना ही ऑटोमेटिक बन गया है कि इस प्रोसेस में ज्यादातर लोग शायद याद भी नहीं रखते कि हमने टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। और इससे फायदा क्या हुआ है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नागरिक के लिए जिंदगी आसान हो गया है, दूसरा सरकार के लिए भी ट्रैकिंग की इनकम टैक्स आ रहा है, इनकम टैक्स में जो रिटर्न आएगा वो कितना किस परसेंटेज से बढ़ेगा, तो अपने बजटिंग के में ये एक सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सुविधा हो जाता है कि उनको पता है कि इतना सारा जितने सारे टैक्स में देने वाले लोग थे इनके खेमे में आने वाले थे उन सबको उसमें डायरेक्टली इंक्लूड कर लिया गया है।
1: जी
0: तीसरा चीज जो बहुत बड़ा चीज है वो ये है कि टैक्स रिटर्न होने के वजह से फॉर्मलाइजेशन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो गया है। छोटे छोटे इनकम सैलरीड वाले जो कंपनियां जो एसएमई वाले इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए भी इनकम टैक्स देना क्योंकि बहुत ही इजी है, इसीलिए लोगों को प्रवृत्ति हो गया कि अभी इनकम टैक्स और जीएसटी इन सारी चीजों में कोई आपत्ति करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारे सामने आ जाते हैं।
1: जी
0: अगर हम साथ में क्यूआर कोड को अगर उसके साथ में अगर हम तीसरा चीज तीसरा पिलर को अगर उसके साथ में लाएं
1: जी
0: यूपीआई का जो सिस्टम है तो ये तीनों मिलाकर जो फाइनेंशियल सिस्टम एक इतना बड़ा एक 1.5 बिलियन लोगों की जो एक इतनी बड़ी तादाद है इन सबके लिए एक जिसे कहते हैं फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बन गया है जिसका संभव क्या इनफैक्ट मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ दुनिया में इसका कोई तुलना ही नहीं है
1: जी।
0: इतने बड़े लोगों को इतने कम समय में इतने बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क के अंदर शामिल करना उनके लिए एक आइडेंटिटी देना और साथ में उनके लिए यह भरोसा

0: देना कि ये चीज आपके लिए काम का है।
1: अनिल जी, अगर आपके पास आए, आपको लगता है एक और भी एस्पेक्ट है कि भयमुक्त हो गया है, अब जो करों का जो एक डर होता था वो खत्म हो गया है और ट्रांसपेरेंसी आ गई है पूरे सिस्टम में?
2: काफी हद तक सुनू आ गया है, लेकिन जो एक माइंडसेट है जो हमारे रेगुलेटर्स में है वो उसको बदलना बहुत आवश्यक है। वो टाइम लगेगा, अभी वो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एरा का अभी भी ट्रॉमा इनके दिमाग में है। तो रेगुलेटरी ओवररीच जो है वो हमें जीएसटी में भी दिखते हैं, मतलब एनेक्डोटली जो दिखता है, इनकम टैक्स में भी दिखता है। तो इसको और भी ट्रांसपेरेंट करना होगा, लेकिन वित्त मंत्री इसके शी इज अवेयर ऑफ इट। उन्होंने हाल में इनफैक्ट कुछ चेंजेस लाने का उन्होंने एक प्रॉमिस किया था, लेकिन पिछले बजट में नहीं लेके आ पाई वो। तो मुझे लगता है अगले बजट में वो ट्रांसपेरेंसी के लिए और चेंजेस लाएंगी, तो डेफिनेटली वो बदलाव तो आया ही है।
1: आइए सुनते हैं जीएसटी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट।
3: जीएसटी लागू होने से पहले देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था कई अलग अलग केंद्रीय और राज्य करों में बटी हुई थी। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स और मनोरंजन कर जैसे कई कर अलग अलग स्तरों पर लगाए जाते थे। राज्यों के बीच टैक्स की दरें और नियम भी अलग थे। इसका असर कारोबार की लागत, सामान की कीमत और देश भर में व्यापार की गति पर पड़ता था। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याओं में थी का बोझ अगले चरण की कीमत में शामिल हो जाना। जीएसटी पर काम की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। वर्ष 2006 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक सहमति बनने में कुछ समय लगा। वर्ष 2016 में संविधान के 101वें संशोधन के बाद जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। इसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच दरों, नियमों और राजस्व से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श भी हुआ। आखिरकार 1 जुलाई 2017 को जीएसटी देश में लागू हुआ। इस वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार माना गया। जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के 17 अलग अलग करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था में शामिल किया। जीएसटी की खासियत यह रही कि इसमें टैक्स का भुगतान केवल उत्पादन या बिक्री के अलग अलग चरणों पर नहीं, बल्कि वस्तु या सेवा की आपूर्ति पर आधारित किया गया। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था ने कारोबार की अलग अलग कड़ियों में टैक्स के दोहराव को कम करने में मदद की। शुरुआत में नई डिजिटल व्यवस्था को अपनाना कारोबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन समय के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, ई वे बिल और ई इनवॉइस जैसी व्यवस्थाओं ने टैक्स अनुपालन को अधिक डिजिटल और व्यवस्थित बनाया। इसी बदलाव का असर टैक्स बेस पर भी दिखाई दिया। वर्ष 2017 में जीएसटी के करीब 66.5 लाख करदाता थे। मई 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 1.65 करोड़ हो गई। इसी अवधि में सकल जीएसटी संग्रह 2017-18 के करीब 7.4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में लगभग 22.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी जीएसटी ने केवल टैक्स जमा करने का तरीका नहीं बदला, इसलिए देश के कारोबार को एक साझा बाजार से जोड़ने, अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक बनाने और टैक्स अनुपालन को डिजिटल करने की दिशा में भी बड़ा बदलाव किया। आज जीएसटी की व्यवस्था लगातार विकसित हो रही है। दरों में बदलाव से लेकर प्रक्रियाओं के सरलीकरण तक इसका उद्देश्य अब केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि कम जटिलता, ज्यादा पारदर्शिता और आसान अनुपालन वाली व्यवस्था तैयार करना है।
1: तो जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि पॉलिसी जो एनवायरनमेंट होता है इट इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे जैसे सिचुएशंस इवॉल्व होती हैं तो पॉलिसी को भी इवॉल्व होना होता है। और जैसे कि अभी हमने देखा कि जीएसटी की जो लेटेस्ट मीटिंग, उसमें प्रोसेस रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्लैब्स तो कम हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन प्रोसेस रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उस पर अभी भी कार्य हो रहा है। एक और जो एरिया है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, अगर आपके पास है शुभम भोए, फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिफॉर्म्स है, फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें जो रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि जो बिजनेसेस हैं उनमें एक सुगमता आए व्यापार में और उस साथ ही साथ सेफगार्ड भी हो, इसको आप कैसे देखते हैं? कई चरणों में ये सरकार ने इन 12 वर्षों में किया है, सो ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है ऐसे समय पे जब बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट जरूरी हो गया है?
0: फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो बदलाव आया है उसके साथ एक और बदलाव साथ में आया है। इनफैक्ट मैं दो चीजों का जिक्र करूंगा
1: जी।
0: एक आया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ये एक साथ में एक मूलभूत चेंज, और इसके साथ में FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये तीनों का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि तीनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं।
1: जी जी।

0: सरकारी भूतंत्र का ये सीक्वेंस रहा था कि हम इस तरीके से बदलाव लाएंगे कि मोटा मोटी जो भी शख्स नहीं, मैं कहूंगा कंपनी या फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रोसेस होनी चाहिए वो समांतरल होनी चाहिए। यानी कि पहले, अब देखिए जिसका जिक्र अनिल जी पहले कर रहे थे कि एक पुरानी माइंडसेट की, ये पुरानी माइंडसेट फॉरेन एक्सचेंज के मामले में बहुत ज्यादा था और हमने बहुत सारे हॉरर स्टोरी सुने थे कि फॉरेन एक्सचेंज को लेकर कंपनियों में बहुत सारे झमेले, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रेड्स, इधर इनफैक्ट स्टेट लेवल में भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के बहुत सारे अनुशासन वगैरह वगैरह, इन सब मिलाकर एक अस्त व्यस्त हालत था फॉरेन एक्सचेंज को लेकर। इसमें प्रगति लाने में सरकार ने सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बदलाव जो लाए हैं वो ये है कि सारे कंपनियों को उन्होंने एनकरेज किए हैं कि आप या तो कंपनी यानी कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज के तहत आप रजिस्ट्रेशन हो जाइए, और अगर ना भी हो सके तब भी अगर आप सेक्शन 8 कंपनी, जो कंपनी एक्ट के तहत ही आता है लेकिन वो एक जिसे कहते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कि आपके प्रॉफिट लॉस कुछ का दायरा नहीं है लेकिन आप फिर भी एक कंपनी, तो आपके लिए वही मोटा मोटी रूल्स लागू होंगे जो बड़े कंपनियों के लिए
1: जी।
0: तो इससे फायदा क्या हुआ है कि सबके लिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रीटमेंट सिस्टम क्लियर हो गया है, और ये चीज FCRA में भी काफी हद तक पुश किया गया है कि जो कंट्रीब्यूशंस आएंगे फॉरेन एक्सचेंज के, जो फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए कामकाज होंगे वो शुड बी अबव बोर्ड, यानी कि वो दिखना चाहिए कि किस लिए किस तरीके से आ रहे हैं। और इसकी जरूरत क्यों है, अगर हम दुनिया के किसी भी बड़े देश को अगर हम देखें इस वक्त, तो एक बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा है, और वो उथल पुथल क्यों चल रहा है, इनकी करेंसी दूसरे देशों से आने वाले पैसे, उसके चलते राजनीतिक इम्पैक्ट, दवा दबोच वगैरह बहुत सारी चीजों की प्रक्रिया है। उन सभी चीजों के चलते हुए सारे बड़े बड़े देशों में इस पर निगरानी रखने की नया नया सिस्टम्स जो कोऑर्डिनेटेड है उनको लाया गया, और उसको लाने के लिए क्या किया गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अंतर्जातिक एक सिस्टम है। इसमें भारत 2014 में मेंबर बन गया है, और भारत काफी जिसे कहते हैं इलस्ट्रियस मेंबर बन गया है इसका। ये OECD का पहले होता था, सिर्फ ये डेवलप्ड कंट्रीज का एक क्लब था जिसमें भारत पहला नॉन OECD मेंबर है जो इस FATF के मेंबर बने, फुल मेंबर बन गए। और फुल मेंबर होने की वजह से क्या हुआ कि भारत की जो एक उन देशों के बीच में विश्वास आया कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज ट्रीटमेंट अंतरराष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत है, ये एक बहुत बड़ी चीज है
1: जी।
0: दूसरा, भारत का जो ट्रीटमेंट है वो दूसरे देशों के लिए, खासकर ग्लोबल साउथ के बाकी सारे देशों के लिए एक तुलनात्मक चीज बन गया है कि इस तरीके से किया जा सकता है। ये चीजें सब मिलाकर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में जो एक सुधार किया गया है वो सब मिलाकर बन गया है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब नेचुरली कि ऐसे इंटीग्रेटेड सिस्टम बनेंगे तो उसमें होता ही है कि कुछ किसी न किसी को इसमें मुश्किल पहुंचती है, वो लाजमी है, लेकिन ये जो पूरे की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर कोई दो राय, और इसलिए आप देखेंगे इसके साथ ही एक और चीज किया गया था जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में बहुत काम में आया, वो है शेल कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज हमारे देश में होते थे जो सिर्फ नाम से होते थे और एक एक एड्रेस में 200-300 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन होती थी। इन सारी कंपनीज का बेसिकली काम था फॉरेन एक्सचेंज को लाना और लाकर कोई ना कोई गलत काम में इसको इस्तेमाल करना। आपको याद होगा ट्रेवल वगैरह में बहुत सारे टाइम में हमने जब इस पर जब बारीकी से जांच हुआ है तो दिखाई गया कोई ना कोई शेल कंपनी के थ्रू से ही ये सारे पैसे आए। ये सारी चीज जड़ से उखाड़ने के लिए जो प्रक्रिया किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू से, जिससे बहुत बड़ा फायदा आया है कि अभी किसी भी सरकारी तंत्र के सिस्टम्स को इस बारे में पता चलता है, पहुंच रहती है किस तरीके से उसको निपटा जाए, उस पर वो खबर रख सकते हैं जी।
1: अनिल जी, एक और जो पहलू है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि विश्वास बना है बिजनेसेस को शामिल करने के लिए, जन विश्वास जो अधिनियम आया है 2023 में जिसमें डिक्रिमिनलाइज किए गए हैं 183 प्रोविजंस 42 सेंट्रल एक्ट्स में, और उनको क्रिमिनल ऑफेंस से सिविल पेनल्टीज में बदला गया है जो माइनर और टेक्निकल लैप्सेस है, ये कितना आपको इंपॉर्टेंट लगता है? और जो पुराने लॉज है उनमें लगभग 1500 जो सेंट्रल लॉज थे जो आउटडेटेड थे उनको हटाया गया है, ये भी क्या ईज ऑफ डूइंग

0: बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है।
1: बिल्कुल सुनो जी, इनफैक्ट इसको इतनी देर हो गई यही मैं हैरान हूँ। जो ये जो पुराने जो लॉ होते थे, अजीब अजीब किस्म के कानून होते थे जो अंग्रेज बना के गए, तो वो आज तक चलते आ रहे थे, तो उनको जैसे एक एक करके जो इसको हटाने का जो प्लान था, आप जान के हैरान होंगे, ये 1993 का है। जो स्वर्गीय विवेक देबरॉय थे, ये उस टाइम IIFT में थे, इन्होंने एक एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था और उसमें इन्होंने सारे जो लॉस थे ये जो हटाने हैं, तो 1993-94 में इन्होंने छापा था ये कमिटी का रिपोर्ट, और उसको मतलब ये सरकार जो है मोदी जी की सरकार जब आई, इन्होंने उसको उठाया और फिर उसको जो प्रोसेस रिफॉर्म लेवल पे पुश किया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो जो हमने डिस्कस किया कि जो माइंडसेट है जो एक मतलब बिजनेसमैन की ओर जो है एक एक अप्रोच है, वो उसमें तो बहुत ही बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो ईज ऑफ डूइंग जो ये लॉस है, अब इनको भी बदलना है। अब जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा कि रेगुलेटरी ओवररीच, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो ये ना भारत सरकार ना स्टेट लेवल सरकार इसका कोई मसले का हल तुरंत ढूंढ पा रहे हैं। इस पे कोशिश तो जरूर जारी है, लेकिन इस पे और भी मेहनत करना है, क्योंकि हमारे जो ये उद्योगपति हैं खास करके मध्यम वर्ग में, इनको जो रेगुलेटरी जो हैरेसमेंट होता है इसके कारण फ्रिक्शन बढ़ता है। जब फ्रिक्शन बढ़ता है इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, तो ग्रोथ नहीं होता है। तो इसको हटाना एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी, नेशनल प्रायोरिटी बनाना चाहिए।
0: जी, तो शुभमय जो अभी अनिल जी कह रहे थे कि कांस्टेंट सिंप्लीफिकेशन प्रोसेसेस की रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के थ्रू, जिसका जिसके बारे में सरकार भी पूरी तरह प्रयासरत है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की हम बात सुनते हैं, और डिजिटलाइजेशन से अलग अलग जो बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं, GST की तो हमने बात करी ही, आपको परमिट्स मिलने हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्रेडिट जो मिलता है ये टेक्नोलॉजी की वजह से, जो उसमें ईज आई है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको लगते हैं ओवरऑल जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके उसको बेहतर करने के लिए?
2: बिल्कुल सुनील जी, और इसमें अगर आप देखें कि अभी जो डिबेट चल रहा है MDI चार्जेस को लेकर, MDR चार्जेस को लेकर UPI में, अगर आप इसको देखें तो ये बड़ी दिलचस्प चीज है। वो क्यों? क्यों एक समय था जब लोग कैश से ही कोई ट्रांजैक्शन करना नॉर्मल मानते थे, उसी में ही चलते थे।
0: जी।
2: आज भारत की इतनी बड़ी जनता का तादाद UPI के बनाए हुए QR कोड के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि उनको अभी लगता है कि ये चीज हट जाएगा तो हमारे लिए हम ऐसे वापस पहुंच जाएंगे कहीं, और वो पहुंचना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं माइंडसेट का बदलाव है। अगर हम इसको देखें तो ये अविश्वसनीय है कि किस तरीके से लोग एक मतलब लोग का कहना है कि ये एक रिफॉर्म है, और इस रिफॉर्म को हम इसको हम अपना चुके हैं, इस पर हम बिल्कुल इसमें हम लीन हो गए हैं और हम इस पे ही टिकना चाहते हैं। MDR चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, वो उसके ऊपर तर्क हो सकता है, लेकिन एक इतना बड़ा चेंज कि जो गरीब से और इस चेंज इसलिए मूलभूत है कि क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी कहता है कि नहीं, हम सबसे बड़ा ये जरा देखिएगा कि कहीं हमको इससे हटना पड़े, इससे हम हटना जाए। तो ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप कहें जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, वो इसका एक बहुत एक जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा मिसाल है। और इसमें सिर्फ QR कोड नहीं, अगर आप इसके नीचे देखें तो इसमें इंक्लूडेड है बैंक अकाउंट, यानी कि देश के सारी जनता एडल्ट जो है सबके पास बैंक अकाउंट है। अगर हम इसके नीचे जाए तो देखेंगे कि इसके नीचे सबके आधार कार्ड जो श्रृंखला है वो है। तो कुल मिलाकर ये एक फाइनेंशियल सिस्टम को बदल देने का इतना बड़ा एक जिसे कहते हैं एक एक ठिकाना है, एक सिस्टम है जिसको जिसका फिर से मैं वही कहूंगा कि इसका फ्रेंकली कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में।
0: जी।
2: और ये चीज साथ में अगर आप देखें बाकी सारी चीजों में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी, बाकी क्षेत्र में भी इस

0: का ही जोर है, इसी का ही आवाज है कि भाई हमें भी इसी तरह का सुविधा चाहिए
1: जी।
0: कि अगर इनकम टैक्स आराम से भर सकते हैं, अगर हम जीएसटी में कोई झमेला नहीं होता है, अगर पेमेंट प्रक्रिया अगर सुचारू ढंग से चलता है, जिस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, तो आपको याद होगा कि जैसे एक टाइम था कि स्मॉल कंपनीज को जब अपना कैश लेकर जाते थे बैंकों में, तो आए दिन खबर आती थी कि फलाने के जगह पे डाका डल गेट लग गया है, यहाँ पे कुछ वो पैसे लूटपाट हो गया है। अब वो सारे खबरें जिसे कहते हैं इतिहास बन चुका
1: जी,
0: है,
1: जी, जी।
0: क्योंकि वो पैसे लेकर जाते नहीं है,
1: बिल्कुल
0: वो जरूरत नहीं होती है। तो ये चीजें जो गांव दूर दूर के गांव तक में भी ये इसका प्रक्रिया इतना बड़ा बन चुका है कि वहां पर तो खासकर इस चीज को लेकर ही लोग चलते हैं कि भाई पैसे लेकर कौन चलेगा।
1: जी जी।
0: तो ये इज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं स्तंभ है। अगर हम इसको अगर आगे देखें कि ये किस तरीके से बिजनेस को बदल रहा है, तो बिजनेस चलाने में जो परमिट्स हैं और जो प्रोसेसेस हैं, वो सारे फिर इसी से ही जुड़े हुए बन गए हैं कि वो बन किसी बिजनेस को किसी चीज परमिट मिलने में काफी आसानी हो गई है। और हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा कि अभी भी बहुत सारी जगह पे और वो शायद हमारी एक गलत हमारी जो तरीका है कि हम फूड क्वालिटी कैसे रख रहे हैं, उसमें क्या चीज किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, उस पर जरूर निगरानी होनी चाहिए, उस पर लोगों को भरोसा आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि एक कंपनी जिनके नाम हमारे मुंह से एकदम जस्ट बच्चा बच्चा भी याद बोल देता है, ये सारे कंपनियों का हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे अगर इस तरह का पेमेंट सिस्टम नहीं आ सकता। और इससे आज जुड़े हुए गिग इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए इतने मिलियंस की जो नौकरी है, ये पूरा ये सोच में भी नहीं आ सकता था अगर ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का बंदोबस्त अगर नहीं तैयार होता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभमोय अनिल, आप शामिल हुए इस कार्यक्रम में जन सेवा से देश सेवा, और आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद सोनू जी।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 25वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के नौजवानों में दुनिया च उभर रही चुनौतियों के हल मुहैया कराने की प्रतिभा ते समर्था मौजूद है। श्री मोदी ने चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए तो वध की लागत के विकास प्रोजैक्टों का उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रखा। सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण ढंग नाल एकत्र होने वाले लोगों को गैर कानूनी ढंग नाल हिरासत में ना लैन अते आवाजाही निर्विघन जारी रखने के निर्देश दिए ने। भारत ने नवी दिल्ली में कल दी घटनाओं बारे मनुखी अधिकारों बारे हाई कमिश्नर के दफ्तर दी टिप्पणियों देश के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी करार दिंदिया रद्द किया। निशानेबाजी भारत के उदय वीर सिद्धू ने मिस्र च काहिरा में ISSF विश्व कप में मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जितया। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया उभर रही चुनौतियों के हल लभ रही है। उन्होंने भरोसा प्रगटाया कि भारत के नौजवानों में यह हल मुहैया कराने की प्रतिभा ते समर्था मौजूद है। श्री मोदी ने आज शाम चेन्नई विखे जयगोपाल गरोदिया हिंदू स्कूल के गोल्डन जुबली समारोह दौरान यह गल कही। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के सुपने साकार करने में नौजवान अहम भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडिया चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड

0: स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
1: पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां पूरी तरह कानून अनुसार काम कर दिया ने अते किसी भी शिकायत के निपटारे लिए देश की अदालतां सारियां लिए उपलब्ध ने। दिल्ली पुलिस ने अज दस्या कि CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी के देहांत बारे पता लगन ते अधिकारियों ने उन्होंने मुलाकात करके एक खबर दिती सी अते हर संभव मदद की पेशकश की सी। DCP नेहा यादव ने अज नवी दिल्ली में मीडिया को दस्या कि अधिकारी ने दिपके नू कई बार पूछा कि वह अपने माता पिता नाल गल करना चाहते हैं पर उन्हें इनकार कर दिता। उन्होंने कहा कि CJP का पिछला विहार यह दर्शाता है कि वह किए गए वादियां अते दित्तियां गईयां हदायतों की पालना नहीं करते। भारत के उदयवीर सिद्धू ने अज मिसर के कायरा में ISSF कप में मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जितया है। 24 साल निशानेबाज ने शानदार प्रदर्शन करदिया 240.6 अंक हासिल किए। तो जर्मनी के कई बार के ओलंपिक तमगा जेतू क्रिस्टियन रेट्स ने अद्धे अंक के मामूली फर्क नाल हरा दिता। क्रिकेट में इंदौर के होलकर स्टेडियम में वैसटइंडीज़ खिलाफ तीजे 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच में ताज़ा खबर मिलने तक भारत ने 18 ओवर में 8 विकटों के नुकसान से 202 दौड़ बना लिया सन। इस तो पहले वैसटइंडीज़ ने टॉस जीत के भारत को बल्लेबाजी करने लिए कहा। 5 मैचों की लड़ी में दोवें टीम एक एक मैच जीत के बराबरी ते ने। मौसम विभाग ने भलके पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली में तेज़ हवावां ते बिजली चमकण नाल मींह की पेशीनगोई की है। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर ते लद्दाख में भी इहोजे हालात बने रहने की संभावना है। नेपाल में गोरखा जिले के बूढ़ी गंडकी नदी में अज सवेरे आए अचानक हड़ कारण कई मकान ते पुल रुड़ गए। किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों नूं बचा लिया गया अते 10 लोग अजे भी लापता ने। नेपाली फौज के जवान अते होर एजेंसियां खोज अते बचाव कार्यों में लगिया हुई ने। अंत विच चोणवीं खबरों ते एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के नौजवानों में दुनिया में उभर रही चुनौतियों के हल मुहैया कराने की प्रतिभा ते समर्था मौजूद है। श्री मोदी ने अज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए तो वध दी लागत के विकास प्रोजैक्टों का उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रखा। सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण ढंग नाल इकत्र होने वाले लोगों को गैर कानूनी ढंग नाल हिरासत में ना लैण अते आवाजाई नूं निर्विघन जारी रखने के निर्देश दिए ने। ते भारत ने नवी दिल्ली में कल दीआं घटनावां बारे मनुखी अधिकारां बारे हाई कमिश्नर के दफ्तर दीआं टिप्पणियां नूं देश के अंदरूनी मामले में दखलअंदाजी करार दिंदिआं रद्द कीता है। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन भलके सवेरे 8:30 ते होएगा। नमस्कार।
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਗਾਇਆ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8:45 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9, 9:15 ਸਪੋਟਲਾਈਟ, 9:30 ਰੂਪਕੋ ਕਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਰਾਤ 10 ਰਵੀਵਾਸਰੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की, इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित, अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक

0: विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
1: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
2: We have seen certain remarks.
3: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
2: पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोयजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोयजम की सेवाएं समाप्त कर दी थी। नई दिल्ली में पार्टी

0: सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
1: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोइजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
2: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
3: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
2: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
4: वी लिव्ड एज अ नेशन, हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं,
5: डीकॉलोनाइजेशन।
2: सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया।

देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले 2 दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले 2 दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई

0: विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के सहमत विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरम ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth over 13,000 crore rupees in Tamil Nadu, stresses India's progress draws strength from rich cultural heritage and scientific achievements. Prime Minister Modi asserts India offers immense opportunities for youth, urges them to realize their potential for nation's development. Supreme Court directs authorities to ensure unrestricted movement of people and peaceful gatherers are not illegally detained. India rejects UN Rights Body's remarks on New Delhi events, cites double standards and unwarranted interference in its internal affairs. Flash floods hit Gorkha district of Nepal, 80 people rescued so far, 5 missing. An Indian shooter Udayveer Sidhu wins the gold in men's 10-meter air pistol event at ISSF World Cup in Cairo. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras today. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research.
2: This is a historic day for Tamil Nadu. Today

0: ये आकाशवाणी है। रविवार स्तरीय संगीत सभा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है पंडित जडेश हुगार जी का तबला वादन। पंडित जडेश हुगार जी का जन्म 4 जुलाई 1977 को हुआ। आपके पिता का नाम भगवंतप्पा हुगार है। पंडित जडेश हुगार संगीत तथा कला परिवार से जाने जाते हैं। आप कल्याण कर्नाटक के जाने माने तबला वादक स्वर्गीय श्री शंकरप्पा हुगार जी के पौत्र है। आप अपने 8 वर्ष की आयु में अपने पिता श्री भगवंतप्पा हुगार द्वारा तबला वादन तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही टॉप ग्रेड उपाधि प्राप्त आकाशवाणी धारवाड़ के टॉप तबला कलाकार आपके चाचा पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर जी से भी तबला वादन में अधिक शिक्षा हासिल की है। कर्नाटक राज्य शिक्षा परीक्षा बोर्ड द्वारा शास्त्रीय संगीत में तबला विद्वत एवं गायन विद्वत की उपाधि, कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से तबला वादन में एमए की उपाधि, आकाशवाणी द्वारा आयोजित किए गए संगीत की ऑडिशन में तबला वादन में टॉप ग्रेड, बी हाई ग्रेड संगीतकार, बी हाई ग्रेड हिंदुस्तानी गायन कलाकार की उपाधियों के साथ फरुखाबाद, पूरब तथा अजरार घराना और दिल्ली घराने की भी उपाधि प्राप्त की है। पंडित जडेश हुगार धारवाड़ संगीत विश्वविद्यालय में लगभग 3 वर्ष संगीत सहायक शिक्षक के तौर पर और कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ में 1 वर्ष अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत रहे। आप केवल देश में ही नहीं बल्कि फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड जैसे विदेशों में भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। साथ ही आप देश विदेशों के कई जाने माने कलाकारों के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपके संगीत कार्यक्रम आए दिन आकाशवाणी कलबुर्गी तथा दूरदर्शन केंद्र चंदन बेंगलुरु से प्रसारित होते रहते हैं। आज के इस अखिल भारतीय संगीत सभा में पंडित जडेश हुगार जी प्रस्तुत कर रहे हैं तबला वादन 3 ताल में। हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रदमठ।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुडे वी प्रेजेंट tabla recital by Pandit Jadesh Hogar. Having imbibed musical instincts from his father Sri Bhagwantappa Hogar, a well-known vocalist and tabla artist of Kalyana Karnataka region, Jadesh inculcated

0: तबला वादन में तीन ताल अब तक सुन रहे थे। अब सुनिए पंडित जडेश होगार जी से तबला वादन में रूपक ताल। हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रद मठ।
1: यू जस्ट हर्ड तबला सोलो बाय पंडित जडेश होगार इन तीन ताल। नाउ लिसन टू रूपक ताल।

0: इस रूपक ताल के साथ पंडित जडेश होगार तबला सोलो समापन कर रहे हैं। हारमोनियम लेहरा संगत कर रहे थे श्री रेवैया वस्त्रदमठ। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कलबुर्गी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया गया था।
1: विद रूपक ताल पंडित जडेश होगार कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल इन टुडेज रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। हारमोनियम लहरा वॉज प्रोवाइडेड बाय श्री रेवैया वस्त्रदमठ। This program was recorded at the studios of Akashavani, Kalaburgi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं देहने की यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।

0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras today. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research.
2: This is a historic day for Tamil Nadu. Today's program involves projects worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier. Others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
1: Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Pulmamalli-Vadapalani stretch of Phase 2 of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. The Prime Minister and Chief Minister C. Joseph Vijay jointly flagged off the new metro services and travelled on the train. Prime Minister Narendra Modi also attended Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalay in Chennai today. Addressing the students, the Prime Minister said the world is looking for solutions to emerging challenges and expressed confidence that India's youth have the talent and potential to provide them. The Supreme Court today directed authorities to ensure that people gathering peacefully are not illegally detained and that the free movement of people is allowed, subject to traffic regulations. It also called for a review of barricading arrangements in Delhi and directed the centre to ensure that metro services operate according to their normal schedule and that internet services remain uninterrupted, subject to law and order requirements. It further directed that lawyers must not be obstructed from discharging their professional duties. Issuing notice to the centre on a plea seeking initiation of contempt proceedings against authorities over alleged violations of its directions, the Supreme Court said it would hear all parties and ensure that no inconvenience was caused. India today called out Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR, for its double standards and approach of extreme selectivity when it comes to public positions, while rejecting the organization's remarks on yesterday's events in New Delhi. In a statement,

0: जय माता दी। एक बार फिर सारे प्रोग्राम शुरू हो गया है। स्वागत रब का नाम लैके माता दियाँ भेंटा दे नाल और माता जी के आशीर्वाद के नाल और साढ़े पहले कॉलर दोस्त भी जुड़ गए हैं। आओ उन्होंने नाल गलबात करते हैं। सांझी नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: तेरी महफिल में आए किसी को पता नहीं था
0: जी
1: कि तेरी महफिल में आए किसी को पता नहीं था गौरव जी, आपने आवाज लगाई तो हम मशहूर हो गए।
0: ओहो, मैंने इस गल तो एक गल याद आ गई, कहते जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था।
1: वाह जी वाह।
0: जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, आपने हमें खरीद के नायाब कर दिया।
1: ओ माशाल्लाह, बहुत
0: तो फिर अपन ना तुम तारफ करवा दो। शुरुआत तो बहुत वधिया की है, मैंने तो पता लग गया, बाकी आने भी दस दियो मिठी आवाज के मालिक है कौन।
1: जी मैं दिंदर गहलोत, हरियाणा तो गल कर रहे जी।
0: बिल्कुल जी, ये मिठी आवाज बिंदर गहलोत तो अलावा किसी होर दी हो ही नहीं सकती सी। बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वागत दे विच।
1: मेहरबानी।
0: तो बिंदर जी, मौसम दे की हाल चाल ने?
1: मौसम दे बहुत वधिया हाल चाल ने, मौसम ठंडा हो गया।
0: बिल्कुल जी,
1: आज मौसम भी ठंडा हो गया ता कॉल भी लग गई, तो बहुत टाइम अज रेडुआ कीता दोबारा सुनना।
0: जी हां बिल्कुल, बड़ी देर बाद तुहाडे नाल गलबात हो रही है और देखो बहुत सारिया चीज़ा अज घटिया ने, अज मौसम ने दे मिजाज च भी जड़ी है वो थोड़ी जी नरमी आई है, सर्दी आई है। तो दूजे पासे अज माता जी के नवरात्रे शुरू हो गए ने, शरद नवरात्रे, और तुहाडी कॉल भी लगी है और अज बहुत सारे स्रोत्या ने रेडियो दे जड़े अनाउंसर ने एंकर ने उन्हां नूं सम्मानित भी किया, तो अपने आप च बहुत वड्डी गल है।
1: जी जी जी, ते मेरे वालों भी सारे दोस्तों नूं आकाशवाणी FM जलंधरी टीम नूं सारे नूं नवरात्रे दीआं लख लख वधाईआं, मां माई दी कृपा सब उपर बनी रहे जी।
0: जी जी बिल्कुल। तो फिर अज किहड़ा गीत सुनना है तुसीं?
1: अज गीत तुसीं मैनूं सुना दो जी, पाणी दीआं छल्लां होण, प्यार दीआं गल्लां होण।
0: लो जी, फिरोज़ खान साहब नूं आवाज़ मार रहे हैं, वह पाणी दीआं छल्लां लै के आ रहे हैं। तुसीं साडे नाल जुड़े हो, इहदे लई बहुत बहुत धन्नवाद।
1: थैंक यू गौरव जी,
0: थैंक यू जी।

0: मुक ना जावे प्रोग्राम वे स्रोत्या आ जा लोए लोए ये प्रोग्राम देखो जी लोए लोए पहुंच गए ने कॉल बज गई है चकनी जरूर है आओ चकदे हैं। नमस्कार जी कौन बोल रहे ने?
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी कौन बोल रहे ने?
1: धर्मा सागर बोल रहे गौरव सर जी।
0: धर्मा सागर जी बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: अपने शहर का पता दस दौ।
1: हाँ जी फाजिलका तो हाँ
0: मैनू तो पता मैं क्या बाकी भी पता लग जाए जे नवे जुड़े ने।
1: हाँ जी
0: तो फिर कहड़ा गीत सुनना अज
1: गीत लाडली
0: लाडली फिल्म का गीत सुनना तुसी जिवें गीत फिल्म लाडली है लाडलियाँ धियां भी हैगियां तुहाडियां। वाह जी कहते भी धियां करमा वाले नूं मिलदियां और तुसी तां धर्मा सागर हो तुहाडे कर्म तो चंगे वैसे ही ना तो ही बड़ा पता लगता भाई चंगे ने। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल ये गल तो बिल्कुल सही है मैं मानता इस गल नूं और करदे की होए भी दस दिओ।
1: टेलरिंग दा काम करदा सर जी।
0: अच्छा जी जेंट्स के लेडीज टेलर?
1: जेंट्स।
0: अच्छा जेंट्स टेलर ते इस ज्यादातर की सींदे हो?
1: कुर्ते पजामे पैंटा शर्टा सारा कुछ बना ले।
0: वेरी गुड मतलब हुण कुछ फाजिल गा दे जेहड़े कुर्ते मशहूर रहे तुहाडे करके मशहूर ने पजामे?
1: नहीं नहीं
0: नहीं देखो तुसी
1: पहले
0: हाँ बिल्कुल
1: प्रोग्राम
0: बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्राम चलता आ रहा है लेकिन फिर तुसी उहदे च अपनी सांझ पाई है तुहाडा भी एक नाम है रुतबा उहदे विच ते उम्मीद है कि जदों असीं आवांगे तां कुर्ता पजामे वधिया जिहा सी के दिओगे सानूं। अच्छा एक बार फिर दस दिओ हाँ गीत केड़ा केड़ा गीत सुनना जे?
1: मोहम्मद रफी दी आवाज़ ते असां यार दे नज़ारे विच रब देखिया।
0: अच्छा यार विच रब देखिया
1: नेविगेट करना फर्जी ना इंद्रजीत मंगे नो।
0: अच्छा जी कोई खास गल थोड़ा थोड़े खास मित्र ने?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा कदों दे दोस्त ने ओ?
1: साना सी मतलब
0: देखो जी बड़ी वड्डी गल है कि मतलब इन्ने इन्ने पुराने दोस्त दोस्ती अज च टिकी है मतलब ये दोस्ती गूढ़ी है बड़ी। अच्छा यूएसए ने प्रोग्राम सुन रहे ने?
1: हाँ
0: देखो जी ये सानू बहुत ही चंगा लगता है जो साढ़े प्रोग्राम सुनते ने और

तो हंसराज हंस दे बहुत सारे गीत पए ने मेरे को। आओ फिर उन्हों का एक खास गीत जोड़ा मेरे सामने पे है वो सुनाने हैं।

प्रोग्राम चल रहा है जी सौगात, और सौगात प्रोग्राम दे विच हुण वेला आ गया है अज दे आखरी मैसेज नूं पढ़न दा। और आखरी मैसेज आया है जी, ये मैसेज सानूं भेजिया एकम त्रिशा अर्शता ते नाल उहनां दे अवश। और ये फरमाइश करदे ने कि सानूं सुना दिओ गीत दुपट्टा तेरा सत रंग दा, यानी कि बिंद रखिया साहब नूं इन्होंने आवाज़ मारी है। और जे बिंद रखिया साहब नूं कहा तो आना तो उन्होंने पैना ही है, तो आओ फिर बिंद रखिया साहब का गाया ये गीत। और इस गीत नाल इस प्रोग्राम नूं असी खत्म करन दी तुहाडे सारयां कोलों लवांगे इजाज़त। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश बिंद रखिया साहब का गाया ये प्यारा जिहा गीत।

कोई सोना कोई चांदी कोई पुत्र परी परात, कोई सोना कोई चांदी कोई पुत्र परी परात, नी धरती नू कली करा दूंगा तू नची दिन ते रात, धरती नू कली करा दूंगा तू नची।

0: हाँ पंडित जी।
1: पर पत्री कुछ एदा दस दिए, दड़वट जमाना कट बीपी।

ऐसी मांग गोविंद दे, टहल संतन की संग साधु का, हर नामा जप परम गति। इस शब्द गायन की तसी बीबी कमलजीत कौर होरा ने। इस संसार विच उही कुछ वापर रहा है जो प्रभु करवाउंदा है, अर्थात उसदे हुक्म दी अनुसारी ही सारी सृष्टि है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोए। गुजरी की वार महला पंजवां दी 18वीं पौड़ी विच इससे तत्व दी प्रोड़ता है कि उस प्रभु दे हुक्म अनुसार ही सब कुछ वापर रहा है। जीव उसे तरह ही विचर रहे हन जिवें आप जी दी मौज है। नाम रंग विच ही दुर्मत दी निवृत्ति हो रही है। निराकार प्रभु दे जाप सदका ही परम पै तों मुक्ति दी प्राप्ति है। तेरे रंग विच रत्ते जीव ही जूना तो मुक्त, आवागमन तो मुक्ति प्राप्त करते ने। आप जी दे हुक्म विच ही कृपा दे पात्र जीवानू अंदर बाहर उही प्रभु नजरी आ रहा है। जिसने उस प्रभु दे हुक्म नू जान लिया है वो कदे भी पछताउंदे नहीं। वो सदा प्रभु दी अमुली बख्शी हुई दात प्रभु नाम नू हिरदे विच पिरो के रखदे ने। फरमान है, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवणा, जह जह रखै आप तह जाए खड़ोवणा। इस पौड़ी का गायन किया है भाई बलविंदर सिंह अते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

हुक्में अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए। हुक्म मूल रूप विच अरबी भाषा का शब्द है अते इस दा अर्थ है आग्या फुरमान जा आदेश। गुरबाणी विच जिथे हुक्म नूं मनन दी ताकीद कीती है उत्थे ये भी किया है कि हुक्म मनन नाल ही अध्यात्मक सुख की प्राप्ति हुंदी है। हुक्म मने सोई सुख पाए, हुक्म सिर शाह पातशाह है। भगती लहर समय भगती साहित विच भी इस शब्द की वरतों हुई है, परंतु गुरबाणी का ये एक परिभाषक शब्द है। गुरमत अनुसार हुक्म तो ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति ते विनाश हुंदा है। फुरमान है जां तिस पावै तां

मेरे साहिबा तेरे चोज विडाना, जलथल महियल परपुर लीना, आपे सर्ब समाना। इस शब्द का गायन किया सी भाई तरलोचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

या सकल जहान से सेवा क्रम चढ़ाओ मिनी रैन जना मन जाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थर बरोले बहुत अनंत लाटू मधानिया अनगा पंखी पौनिया लैंड ना सा सोए चाड़ पुआई है जंत नानक पौद्या गणत नंत बंधन बंद पुआए सोए पया करतन चै सब को नाचना च हसै चलै सिरोए।

ਸਰਬਰ ਰਹੋ ਭਰਪੂਰ, ਸਗਲ ਘਟ ਰਹੋ ਵਿਆਪੇ।

जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार। एक जी क्या बखान है, हाँ के बल बल बल बल।

0: जन्म मरण दो तेरे हो।
1: सत सत हर सत सत।

देहो दर्श मन चाओ भगत तेहो मन ठहरावै बलियो चराग अंधियार में सब काल उदरी इक नाम धर्म प्रगट सगल।

बेरंच जस गावे जाको सेवा मुन गहे ना तो जात का बलास को जाको जोगी जति सद साधक अनेक तप जटा झूठ भेख किए फिर तो उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए।

प्रिय अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय हो वै सिफत खसमदी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सच्चे पात साह मल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दैसाहु जिस पा

सब नादा वेसाहु सज्जन सच्चा पातिसाहु सिर साहादै साहु जिस पास बैठिया सोहिया

जालथले राम नाम।

बोलह पहिया राम नाम पतित पावन।

मेल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिन से बिनासा विच आसा होए निरासी

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिलावल महला चौथा पड़ताल कर तीरवां बोलो भैया राम नाम पतित पावनो हर संत भगत तारनो हर भर पुरे रहया जल थली राम नाम नित गाय हर दुख बिसारनो रहा।